सुप्रभात, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 19 तारीख। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारी इस सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से

0: अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयु सुनी खेती किसानी। आज की खेती किसानी में हम जानकारी लेंगे परती भूमि को कृषि योग्य बनाए। जानकारी देंगी अनीता तिर्की।
2: परती या बंजर भूमि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आमतौर पर जो भूमि खाली पड़ी रहती है उसे ही परती या बंजर भूमि कहा जाता है। कुछ ऐसी भी जमीन है जिसमें खेती नहीं होती है। उसका कारण या तो जमीन में नमी की कमी है या मिट्टी की संरचना ठीक नहीं है या फिर उस जमीन में पौधों को फिर से उगाने की क्षमता नहीं है या लाभदायक खेती के लायक नहीं है। ऐसे भूमि को भी बंजर भूमि की श्रेणी में रखा जा सकता है। झारखंड राज्य में कुल 80 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें 26 लाख हेक्टेयर जंगल हैं, करीब 20 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लायक नहीं है जिसे सुधार कर खेती की जा सकती है, 3 लाख हेक्टेयर भूमि की खेती नहीं की जा सकती है। वैसी भूमि या तो पथरीली है या दलदल है या बहुत अधिक ढालू है। कुल मिलाकर 23 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसान भाई खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो हम बिना जमीन देखे यह नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार की भूमि को उपयोग में लाना है। पहले पता लगाना पड़ेगा कि उक्त भूमि क्यों बेकार या परती पड़ा हुआ है। इसके लिए उस भूमि का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। सर्वेक्षण के बाद ही उस भूमि को अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से इस तरह की भूमि या तो भूसरित भूमि, बंजर पथरीली भूमि, दलदल भूमि या बेकार पड़ी भूमि होगी। क्षरित भूमि को किसान फिर से कैसे उपयोग में ला सकते हैं ये भी सोच सकते हैं। वो समय की कमी के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। सबसे पहले जान लें कि क्षरित भूमि का उपयोग बिना उचित उपचार किए उसे फसल उपजाने के काम में नहीं ला सकते हैं। भू क्षरण के कारणों को जानने के बाद

0: संरक्षण का उपाय किया जा सकता है। भूक्षरण को रोकने से जमीन में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और नाली धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसे हम गली या रेमाइंस कहते हैं। गली बनने से जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिससे जमीन की खेती करने के लायक नहीं रह जाता है। गली बनने पर इसे तुरंत रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के अनुसार बांध बनाना होगा और ऊपर से आते हुए पानी को दूसरी दिशा में करना होगा। गली के किनारों को ढाल बनाकर घास लगाना होगा। जहां गली की गहराई कम है वहां मिट्टी भर देना होगा। इतना करने के बाद पानी के निकास का उचित प्रबंध करना होगा। ऐसा करने पर 5 वर्षों में बेकार भूमि को खेती लायक बनाया जा सकता है। जहां गली की गहराई बहुत अधिक हो गई है वैसी भूमि को यांत्रिक साधनों द्वारा ही भूक्षरण से रोका जा सकता है। वैसे स्थान पर यांत्रिक साधन के साथ साथ वन रोपण कर देना होगा। सीसम, यूकिलिप्टस, सेमर, साल जैसे उपयोगी वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे जलावन की लकड़ी के साथ साथ उपयोगी और कीमती लकड़ी भी मिल जाएगी। जिस भूमि में मिट्टी की गहराई कम हो उसे फसल उपजाने के उपयोग में नहीं लाना है। चारागाह के रूप में आप उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। दलदल भूमि उसे कहते हैं जहाँ की भूमि बराबर नमी युक्त रहती है, जहाँ जल निकास का साधन नहीं है। इस तरह की भूमि को दलदल भूमि कहते हैं। इस तरह की भूमि में अगर जल निकास के वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं, तो यह खेती के लायक लाया जा सकता है काम में। नहर से सिंचाई वाले इलाके में भी इस तरह की भूमि पाई जाती है। इसका एक ही कारण है, अपर्याप्त जल निकास। किसानों को इस तरह की भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक या कृषि अभियंता से मिलकर सलाह लेनी होगी। वे खेत को देखकर उचित सलाह देंगे।
1: खेती किसानी में अभी हम जानकारी ले रहे थे परती भूमि को कृषि योग्य बनाएं। हमें जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। और अब इसी के साथ आज की खेती किसानी संपन्न हुई। आइए सुने चिंतन।

विश्व महामंच के जीवन महोत्सव में हम सभी जीव पात्रों की भूमिका में हैं। हमारे अभिनय की सफलता हमारी भूमिका में निहित है। हमारी भूमिका हमारी मानसिकता से संबद्ध है। मानसिकता जितनी उन्नत होगी, अभिनय उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए जीवन को महोत्सव बनाने के लिए विचारों को सदैव उच्च और सुदृढ़ रखना होता है। मन को न केवल नियंत्रित बल्कि ऊर्ध्वगामी संचेतना से भरपूर रखना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रमवश हम स्वयं को ही सूत्रधार भी मान बैठते हैं, जबकि सूत्रधार परमात्मा है। उनके संकेतों पर चलने के लिए ही हम बाध्य हैं। वो बाध्यता कोई परतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासन है। दैवीय अनुशासन विश्व की नियति है। इसलिए परमात्मा की छत्र छाया तो एक प्रकार से हमारा संबल है। श्रीमद् भागवत कथा में जीव का प्रतिनिधित्व परीक्षित जी ने किया है। उन्होंने सुखदेव जी जैसे परम संत के माध्यम से ज्ञान और भक्ति को आत्मसात कर जीवन को सार्थक किया है। जीवन मुक्त परीक्षित जी परम धाम को प्राप्त हुए हैं, यानी मुक्त हो गए। मनुष्यत्व ही मूल है। यही कारण है कि शास्त्रों ने मनोर्भव यानी मनुष्य बनो का उपदेश दिया है। मनुष्य बनने के लिए हमें सच्चाई से जुड़ना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। नर ही नारायण है, ये अनुभूति करनी होगी। अपना मनोबल बढ़ाने के लिए संयम धारण करना होगा। जप, तप, ध्यान, भक्ति प्रायः एक रूप हैं। इनके अध्ययन से अपनी शक्ति को बढ़ाना

0: जीवन की वास्तविकता का बोध ही हमारा लक्ष्य है। विवेक के माध्यम से दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। चारों पुरुषार्थों का जीवन में सुंदर सामंजस्य हो। नैतिक मूल्यों की धारणा ही धर्म है। इस नीति मार्ग को अपनाने की बात ही शास्त्रों में कही गई है। नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक होता है। दया, करुणा, सहिष्णुता के भाव उसके जीवन को अधिक उपयोगी बना देते हैं। वो लोकहित को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। अर्थोपार्जन दूसरा पुरुषार्थ है। ये अर्थोपार्जन भी न्याय संगत होना चाहिए। जो लोग अनीति से धन कमाते हैं, अंततः उनका विनाश होता है। दाम्पत्य काम पुरुषार्थ का रूप है। संयमित प्रेम में जीवन सुख और शांति का पथ प्रशस्त करता है। फलतः व्यक्ति परम पुरुषार्थ यानी मुक्ति मार्ग का अनुयायी बन जाता है।
1: चिंतन अभी हम सुन रहे थे, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। और आइए अब सुने प्रातः वंदना का हमारा कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले ये देश गान।

अभी हम सुन रहे थे फिल्म प्रेम पुजारी का ये गाना मोहम्मद रफी, मन्नाडे और साथियों की आवाज में। और आराधना में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में भक्ति संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। भजन, कीर्तन, स्तुति और आरती की मधुर ध्वनियां मन को शांति प्रदान करती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़।

दोस्तों, जब भक्त अपने आराध्य का स्मरण संगीत के माध्यम से करता है, तब स्वर और भाव मिलकर एक ऐसी अनुभूति का निर्माण करते हैं जो आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। संत कबीर सूरदास

इस मंगल आरती के साथ ही अब आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरित मानस कांड।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए।

मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़ कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

अभी हम सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए जानकारी लेते चले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर हम सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता, मधुमेह की बीमारी और हमारा जीवन शैली। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कुमार राजेश चंद्र ओझा और इनसे हमारी मुलाकात करवाएंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह सुरीली। 7:45 पर गांधी कथा आप सुन सकेंगे। 8:00 प्रभात समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 8:45 पर लोकगीत के हमारे कार्यक्रम लोक रंग में आज हम आपको सुनवाएंगे संताली गीत। कलाकार हैं परगना मरांडी और उनके साथी। 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन और 9:30 पर शास्त्रीय संगीत। आज हम सुनेंगे अभिराम पाठक को, इनसे हम सुनेंगे राग देसी में आलाप और धायमार गायन।

5:30 पर जोहार रांची। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 12:00 गृहलक्ष्मी, 12:30 पर फिल्म संगीत और 1:00 हिंदी में समाचार होंगे, 1:05 पर अंग्रेजी में और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 1:20 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में हम आज सुनेंगे गिरिजा देवी को। इनसे हम सुनेंगे ख्याल अब होगी कानड़ा।

1:45 पर कुछ गजलें आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर के समाचार होंगे और 2:30 पर फाजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 3 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं। 3:30 पर रांची मेलोडीज, शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 4:02 पर उर्दू कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे।

0: भावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णाम राज्यानां कृते एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,84,000 मीट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मीट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,77,140,000 मीट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।

0: ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। आज हम सुनेंगे ये भेंट वार्ता, मधुमेह की बीमारी और हमारा जीवन शैली। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कुमार राजेश चंद्र ओझा और इनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: नमस्कार मित्रों, आजकल की जीवन शैली से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है मधुमेह या डायबिटिक। इससे 10 में से लगभग आधा लोग इस बीमारी से अछूता नहीं है। ये बीमारी हमारे जीवन शैली के कारण है क्योंकि बिगड़ती जीवन शैली और हमारा खान पान इस बीमारी को प्रभावित कर रहा है और देखा जाए तो नौजवान साथी भी हमारे इस बीमारी के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो मधुमेह होने का कारण क्या है, हमने अपने जीवन शैली को क्यों बिगाड़ दिया है, किस प्रकार हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करें ताकि डायबिटिक या मधुमेह या शक्कर की बीमारी हम तक नहीं हो, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज आमंत्रित हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर कुमार राजेश चंद्र ओझा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, मधुमेह की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है और देखा जाए तो आजकल के युवा साथी भी इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं?
3: इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं आहार विहार, दिनचर्या रात्रिचर्या। इस पर हम एक सम्यक ढंग से पूरे जीवन को व्यवस्थित करके मैनेज करके अगर चलें तो हम इस रोग से बचे रहेंगे। हालांकि रोगों का कई कारण माना गया है, इसमें एक कारण आनुवंशिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, लेकिन आज के समय में देखा गया कि लाइफ स्टाइल डिजीज ये बन चुका है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा और मध्यम वर्ग के लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं।
2: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान बिगड़ गया है, काम करने के तरीके में बदलाव आ गया है और सोने का, जागने का, काम करने के तरीके में कोई समय इसका निर्धारण नहीं हुआ है। जब मन किया हमने खाना खा लिया, जब मन किया हमने सो लिया, जब मन किया हमने काम करना शुरू कर दिया, तो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है।
3: देखिए, स्वास्थ्य के संदर्भ में बात किया जाए जिसमें मधुमेह, तो हम ये कहेंगे कि आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा जो भी क्रियाकलाप है जिसको हम दिनचर्या रात्रिचर्या बोलते हैं तो वो एक सम्यक ढंग से हो, उस पर अच्छी प्रबंधन हो आयुर्वेद के अनुसार, भाव उसके साथ आहार विहार, तो हम समझते हैं कि ये जीवन शैली गड़बड़ नहीं होगा और हम इसे बचे रहेंगे। और यही कारण है कि आज के फास्ट लाइफ में लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।

0: जॉब हो या फिर हमारा अन्य कोई भी कार्य हो, साथ में हमारे दिनचर्या हो, वो पूरा एक तालमेल उसके साथ हम नहीं बैठा पाते हैं या लोग नहीं बैठा पाते हैं, इसके चलते ये रोग फैल रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है।
1: जी, तनाव से हम घिरे रहते हैं, हर वक्त तनाव का वातावरण हम पे हावी होता है, तो तनाव भी बहुत हद तक जिम्मेदार है डायबिटीज के लिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आयुर्वेद में देखिए, हम ये कहेंगे कि केवल औषधि के द्वारा हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे में मन चिकित्सा मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर, तनाव, अनिद्रा, स्ट्रेस, ये सब जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं मधुमेह को बढ़ाने में बहुत सहायक है, और इसका भी आयुर्वेद में औषधि के साथ में इसका पूरा चिकित्सा पे ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है कम हो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कई कारण से बढ़ता है। हम जो भी वर्क करते हैं उसके चलते, हमारा जॉब, हमारा फैमिली, जो भी हमारे दिनचर्या के जो भी हमारे कार्य हैं उसमें लाइफ स्टाइल इस तरह से गड़बड़ है कि उसमें हमारा तनाव बना रहता है, किसी को अधिक किसी को कम, लेकिन तनाव से आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और इससे मधुमेह तो ठीक है, मानसिक रोग भी हो रहा है। तो मन और आत्मा का संयोग ये बिल्कुल संतुलन अवस्था में होना चाहिए, साथ में फिजियोलॉजिकल हमारा कंडीशन जो वर्क है वो भी संतुलन में होना चाहिए, तो हम समझते हैं कि रोग से हम जल्दी निजात पा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग समझने लगे हैं, तो क्या प्रारंभिक लक्षण है मधुमेह का कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि अब हम मधुमेह के शिकार हो गए हैं, तो हम अपने जीवन शैली में बदलाव करें, हम अपने आहार विहार में परिवर्तन करें, और किन किन चीज़ों का हम सेवन करें और किन किन खाद्य पदार्थों से हम दूरियां बनाएं?
0: इस रोग का पहचान हमारे अंदर महसूस होने लगता है या लोगों के बीच महसूस होने लगता है जो इससे ग्रसित होते हैं। अब इसमें देखिए, मधुमेह कई प्रकार का है, उसके आधार पर प्री डायबिटिक, जो हम एक पूरे डायबिटिक वन या टू स्टेज में नहीं आते हैं, उसके पहले ही लक्षण हमको प्री डायबिटिक में मिलने लगता है, जैसे थकान होना, लेथर्जी होना, बार बार पेशाब त्याग करना, उसके बाद आपका देखा जाए कि लाइफ स्टाइल में वजन भी बढ़ना, वजन बढ़ने के कारण भी आपका ये शुगर होता है। और हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि आयुर्वेद में चयापचय, हम इसमें चयापचय इसलिए ले रहे हैं कि हमारा कहा गया है कि आयुर्वेद में अगर अग्नि 13 प्रकार का अग्नि है, उसमें जठराग्नि अगर मजबूत हो, या हमारी एक तरह से कह लें कि उदर संबंधित प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें आपका उदर संबंधित रोग जो है कहीं ना कहीं आपका लक्षण का कारण बनता है आपका, जैसे एसिडिटी, गैस ज़्यादा जिसको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर शुगर, हमारा चयापचय गड़बड़ होगा तो शुगर का लक्षण उसमें आता है।
1: डॉक्टर साहब, यदि हम मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हो तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाए, आहार विहार में संतुलन किस प्रकार रखा जाए, और आयुर्वेद में इसका उपचार किस प्रकार करते हैं?
0: हाँ देखिए, आयुर्वेद में उपचार अगर हमको मालूम चल जाता है किसी भी तरह से कि हम प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज टू में है स्टेज में, या डायबिटीज वन स्टेज में है, वन तो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, IDDM बोलते हैं उसको, लेकिन प्री डायबिटिक है, उसका लक्षण मिल रहा है, तो उसमें सबसे पहला है कि हमारा लाइफ स्टाइल बड़ा सीमित हो, मतलब उसमें आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या ये बहुत अच्छे ढंग से हो, हम संतुलित भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी करें, जिसमें आपका पाचन संबंधी विकार नहीं हो, हमारा वजन नहीं बढ़े, बहुत तेलीय पदार्थ नहीं हो, ऑयली स्पाइसी नहीं हो, जंक फूड नहीं हो, और खाना पच जाए, और वो प्रसन्नचित मन से भोजन करें, टाइम से करें, समय बड़ा यहाँ पे है, क्योंकि अगर समय से नहीं करेंगे तो हमारा पित्त लेवल, वात पित्त का पित्त लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से हमारी जठराग्नि या हमारे पाचन संबंधी विकार होते हैं, तो ये सब हम अगर मैनेज करते हैं तो निश्चित है कि हम इसको रोक पाते हैं, इसको हम मैनेज कर पाते हैं। और रही बात की चिकित्सा, तो पहले तो देखिए प्री डायबिटिक जो लेवल है उसमें घरेलू चिकित्सा करते हैं, तो बहुत सारे हमें एकल औषधि है, जैसे करेला है, जामुन है, मेथी है, त्रिफला है, सब लोग जानते हैं, इस तरह की कई औषधियाँ हैं, गुलमार हैं, उसको हम अगर निश्चित एक मात्रा में लें तो निश्चित है कि भोजन के साथ, आहार विहार के साथ में उचित औषधि, जो एकल औषधि घरेलू चिकित्सा बोलते हैं, उसको हम मैनेज करें तो निश्चित है कि हम इस रोग से बचे रहेंगे। और अगर स्टेज आगे वाला चला जाए, जैसे आपका मधुमेह, जैसे 20 प्रकार में प्रमेह के बाद मधुमेह होता है, तो 20 प्रकार में अगर वो डायबिटीज 2 है मॉडर्न के हिसाब से, तो हम अनुभवी चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल के हम इसकी चिकित्सा ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने से अगर हाई लेवल का शुगर है तो अपने से चिकित्सा करना उचित नहीं है, उसको चिकित्सक से मिल के चिकित्सा लेना अच्छा रहता है।
1: लोग खुश रहें, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, खुशनुमा माहौल में रहें,

0: ताकि ये बीमारी आप तक नहीं हो और आप अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें।
1: आज की लाइफ इतना भागदौड़ की है कि उसके चलते हम अपने फैमिली पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है मन की शांति, खुशी, और ये खुशी तभी मिलता है जब हम अपने परिवार के साथ में मिल बैठ के खाते हैं, परिवार के साथ में समय बिताते हैं और समय के साथ चलते हैं, तो निश्चित है कि हम मन में शांति, और अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्राणायाम, योग, जो भी है पंचकर्म औषधि, जो भी है हम उसको लेके, और मन की शांति के लिए इसमें कई प्रकार बताए गए हैं, उसको मैनेज करते हैं और निश्चित है कि इसके चलते हमको मन में शांति मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, तो हम निश्चित है इस रोगों से बचे रहेंगे।
0: तो मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे तो आप खुश रहेंगे और आपके घर वाले, आपके मित्र भी खुश रहेंगे, और खुशी तो आपके पास ही है, ढूंढने की उसे आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार राजेश चंद्र ओझा, आयुर्वेदिक चिकित्सक, जो आप इस कार्यक्रम में आए और मधुमेह के बारे में अच्छी जानकारी दी। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार
1: जी, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी हम जानकारी ले रहे थे मधुमेह की बीमारी और हमारा जीवन शैली। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर राजेश चंद्र ओझा और इनसे हमारे मुलाकात करवाई संजीव कुमार लाल ने। और अब इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली। सुबह सुरीली का ये पहला नगमा।
4: सजना।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म परख का ये गाना। शैलेंद्र के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। आइए सुने फिल्म हम दोनों का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है।

बोलो को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और उन बोलो को सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने, आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और इस गाने को हमने लिया है फिल्म अभिमान से।

आइए सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को फिल्म जीवन मृत्यु में। बोलो को लिखा है आनंद बख्शी ने और उन बोलो को सिरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म मान जाइए का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म आप आए बहार आई में। बोलो को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर के गाय फिल्म तलाश के इस गीत के साथ ही अब आज की सुबह सुरीली संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांच केंद्र है, आइए सुने गांधी कथा।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

गांधीजी ने देश वापसी के उपरांत भ्रमण एवं देशवासियों से मिलने की नीति अपनाई, ऐसा उनके पथ प्रदर्शक स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले का निर्देश भी था। भ्रमण के दौरान उन्हें देश में मौजूद अव्यवस्था कुरीतियों का परिचय तो मिला ही, इस देश के अंदर व्याप्त एक राष्ट्र की आत्मा भी दिखी।

प्रस्तुत है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के कुछ अंश। स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। सन 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे महात्मा मुंशी राम के दर्शनों के लिए जरूर जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले के भारत सेवक समाज ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी। उसका प्रबंध श्री हृदयनाथ कुजरू के जिम्मे था। स्वर्गीय डॉक्टर देव भी उसमें थे। उनका यह प्रस्ताव था कि उस काम में मदद करने के लिए मैं अपनी टुकड़ी भी ले जाऊं।

शांति निकेतन वाली टुकड़ी को लेकर मगनलाल गांधी मुझसे पहले हरिद्वार पहुंच गए थे। रंगून से लौटकर मैं भी उसमें जा मिला। कलकत्ते से हरिद्वार पहुंचने में खूब परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बों में कभी कभी रोशनी तक नहीं होती थी। सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बों में ठूंस दिया गया था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तीरता था। नीचे नीरे लोहे का फर्श था। फिर घबराहट का क्या पूछना। इतने पर भी श्रद्धालु हिंदू अत्यंत प्यासे होने पर भी मुसलमान पानी के आने पर उसे कभी न पीते थे। हिंदू पानी की आवाज आती तभी वे पानी पीते। इन्हीं श्रद्धालु हिंदुओं को डॉक्टर दवा में शराब दें, मांस का सत दें अथवा मुसलमान या ईसाई कंपाउंडर पानी दें तो उसे लेने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता और न पूछताछ करने की जरूरत होती है। हमने शांति निकेतन में ही देख लिया था कि भंगी का काम करना हिंदुस्तान में हमारा खास धंधा ही बन जाएगा। स्वयं सेवकों के लिए किसी धर्मशाला में तंबू लगाए गए थे। पखानों के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुदवाए थे, पर उन गड्ढों की सफाई का प्रबंध तो ऐसे अवसर पर जो थोड़े से वैतनिक भंगी मिल सकते थे उन्हीं के द्वारा वे करा सकते थे ना। इन गड्ढों में जमा होने वाले पखानों को समय समय पर ढकने और दूसरी तरफ से उन्हें साफ रखने का काम फिनिक्स की टुकड़ी के जिम्मे कर देने की मेरी मांग को डॉक्टर देव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस सेवा की मांग तो मैंने की, लेकिन इसे करने का बोझ मगनलाल गांधी ने उठाया। मेरा धंधा अधिकतर डेरे के अंदर बैठकर लोगों को दर्शन देने का और आने वाले अनेक यात्रियों के साथ धर्म की या ऐसी ही दूसरी चर्चाएं करने का बन गया था। मैं दर्शन देते देते अकुला उठा। मुझे उससे एक मिनट की फुर्सत न मिलती थी। नहाने जाते समय भी दर्शनाभिलाषी मुझे अकेला न छोड़ते थे। फलाहार के समय तो एकांत होता ही कैसे। अपने तंबू के किसी भी हिस्से में मैं एक क्षण के लिए भी अकेला बैठ नहीं पाया। दक्षिण अफ्रीका में जो थोड़ी बहुत सेवा मुझसे बन पड़ी थी उसका कितना गहरा प्रभाव सारे भारत खंड पर पड़ा है इसका अनुभव मैंने हरिद्वार में किया। मैं तो चक्की के पाटों के बीच पीसने लगा। जहां प्रकट न होता वहां तीसरे दर्जे के यात्री के नाते कष्ट उठाता और जहां ठहरता वहां दर्शनार्थियों के प्रेम से अकुला उठता। मेरे लिए यह कहना प्राय कठिन है कि दो में से कौन सी स्थिति अधिक दयाजनक है। दर्शनार्थियों के प्रेम प्रदर्शन से मुझे बहुत बार गुस्सा आया है और मन में तो उससे भी अधिक बार मैं दुखी हुआ हूं। इतना मैं जानता हूं तीसरे दर्जे की कठिनाइयों से मुझे असुविधा हुई है, पर क्रोध शायद ही कभी आया है और उससे मेरी उन्नति ही हुई है। उन दिनों मुझमें घूमने फिरने की काफी शक्ति थी, इससे मैं काफी भ्रमण कर सका था। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि रास्तों पर चलना भी मुश्किल से संभव हो। इस भ्रमण से मैंने लोगों की धर्म भावना की अपेक्षा उसका पागलपन, उनकी चंचलता, उनका पाखंड और उनकी अव्यवस्था ही अधिक देखी। साधुओं को तो जमघट ही इकट्ठा हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सिर्फ मालपुए और खीर खाने के लिए ही जमे हों। यहां मैंने पांच पैरों वाली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरा अज्ञान तुरंत दूर कर दिया। पांच पैरों वाली गाय दुष्ट और लोभी लोगों की लोभ की बलि रूप थी। गाय के कंधे को चीर कर उसमें जिंदे बछड़े का काटा हुआ पैर फंसाकर कंधे को सी दिया जाता था और इस दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। पांच पैर वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न लल जाएगा। उस दर्शन के लिए वह जितना दान दे उतना कम है। कुंभ का दिन आया, मेरे लिए वह धन्य घड़ी थी। मैं यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थ क्षेत्र में पवित्रता की शोध में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा, किंतु 17

अखंड के बीच ये पवित्र आत्माएं भी थी। ये ईश्वर के दरबार में दंडनीय नहीं मानी जाएंगी। यदि ऐसे अवसर पर हरिद्वार में आना ही पाप हो तो मुझे सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करके कुंभ के दिन तो हरिद्वार का त्याग ही करना चाहिए। यदि वहां आने में और कुंभ के दिन रहने में पाप न हो तो मुझे कोई न कोई कठोर व्रत लेकर प्रचलित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है, इसलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई जो कलकत्ते और रंगून में यजमानों को मेरे लिए उठाना पड़ा था, इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने देखा कि यदि मैं यजमानों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊंगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों को मेरी सेवा में ही उलझाए रखूंगा, अतएव 24 घंटों में 5 चीजों से अधिक कुछ न खाने और रात्रि भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया, दोनों की कठिनाई का पूरा विचार कर लिया। बीमारी की दवा के रूप में बहुत सी चीजें लेना या न लेना, दवा की गिनती खाने की वस्तुओं में करना या न करना, इन सब बातों को सोच लिया और निश्चय किया कि खाने की कोई भी पदार्थ में 5 से अधिक न लूंगा। इन दो व्रतों को लिए अब 13 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने मेरी काफी परीक्षा की है, किंतु जिस प्रकार की परीक्षा की है उसी प्रकार ये व्रत मेरे लिए काफी ढाल रूप भी सिद्ध हुए हैं। मेरा यह मत है कि इन व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है और मैं मानता हूं कि इनकी वजह से मैं अनेक बार बीमारियों से बच गया हूं। जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशी राम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद अस्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में मैंने रामदेव और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मी झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने मुझे सलाह दी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ू। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिले ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। ऋषिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझमें धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर न शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे समान लोगों को दुख होता है। ये दो हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। लगभग 10 साल की उम्र में पोरबंदर में ब्राह्मणों के जनेऊ में बंधे हुए चाबियों की झंकार सुनकर मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचा करता था कि झंकार करने वाली कुंजियां जनेऊ में बांध कर मैं भी घूमूं तो कितना अच्छा हो।

ठहराने वाले लोग दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसा दुनिया में कहीं नहीं दिया गया है।

गांधी जी ने देखा कि हमारे मुख्य लोग हिंदुस्तान का सफर करते थे, वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा

गांधी कथा अभी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमरीका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत कर फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत

0: की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमरीकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं,

0: जंग खत्म, होर्मुज खुला, तत्काल कत खम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में हैं जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message, Bonjour Modi, or Hello Modi, and chants of Bharat Mata Ki Jai.

0: critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the Second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। झारखंड में इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे उच्च सदन में झारखंड के जनहित, विकास और जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इधर जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिमल नाथवानी ने झारखंड में अपनी एक अलग साख और विश्वास बनाया है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में उनकी जीत पर जश्न मनाया गया। धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
3: 12 साल बेमिसाल देश के लिए आज गर्व का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित किए और उस समय से लगातार देश को विकास के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मान स्वाभिमान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होते जा रहा है।

0: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव इस तरह के मामलों में कोर्ट के पारित आदेश को गंभीरता से लें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल रांची के शहरी क्षेत्रों में बिजली विभाग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों में भी भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्यभर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चाईबासा जिले में भी कई जगह योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक राजेंद्र सलूजा ने कहा कि स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है।
1: से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, तब से लोगों का झुकाव हुआ है योग के प्रति और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में इसका लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसमें और जागरूक होने की जरूरत है। योग जो है बात करने की चीज नहीं है, योग को करना पड़ता है, इसको जीवन में उतारना पड़ता है।
0: आदित्यपुर नगर निगम में नए नगर आयुक्त के रूप में एजाज अनवर ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री अनवर ने कहा कि निगम क्षेत्र का समग्र विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की शुरुआत साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से की जाएगी।
2: योगदान के बाद में जो सबसे पहली प्राथमिकता चुकी है नगर का मामला है, तो डेवलपमेंट यहाँ का पहला प्राथमिकता है और उसकी शुरुआत साफ सफाई से शुरू करेंगे और उसके कितनी स्थितियों प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी के बेसिस पर करना है, सॉल्यूशन में है।
0: पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने क्राइम मीटिंग के बाद बताया कि जिले में भू माफियाओं और अवैध भूमि कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
3: समीक्षा के क्रम में जिस थाना प्रभारी ने अच्छा काम किया था उनको रिवॉर्ड दिया गया। इसके साथ साथ इस क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स हैं, पिछले 10 साल के अलग अलग अपराधों के क्रिमिनल्स हैं, उनका वेरिफिकेशन तथा जेल से छूटने वाले जो अपराधी हैं उन पर किस प्रकार से विशेष निगरानी रखी जाए इसकी चर्चा की गई है।
0: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची, खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में वज्रपात की आशंका को देखते हुए रांची सहित 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष समाचार विराम के बाद।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सबको छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त

0: झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अब कुछ खेल समाचार। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का कल भव्य समापन हुआ। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को सीधे सेटों में 25-23 और 25-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग के रोमांचक फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्यसभा चुनाव में झारखंड में हुए बड़े उलटफेर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग, झामुमो की जीत, महागठबंधन का प्रणव हारा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन की समीक्षा। हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची में संघ कार्यालय पर हमले के आरोपियों के संबंध पाकिस्तान से। और दैनिक जागरण ने राज्य में वज्रपात से बच्ची समेत 5 की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नाथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज मैं आपके साथ ऋतुश्री।

आइए सुने लोक रंग लोकगीत का हमारा कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवाएंगे संताली गीत। कलाकार हैं परगना मरांडी और उनके साथी।

परगना मरांडी और साथियों की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये संताली गीत। और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा लोकरंग लोकगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रस रंजन।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दिल तो पागल है का ये गाना, आनंद बख्शी के बोल थे और उत्तम सिंह का संगीत।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। बोलो को लिखा था आनंद बख्श ने, धुन तैयार की थी जतिन ललित ने। आइए सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म रिफ्यूजी का ये गाना। जावेद अख्तर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में सुनते हैं जावेद अख्तर के बोलों को। अनु मलिक ने इस गाने की धुन बनाई है और इस गीत को हमें लिया है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से।

आई सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गाना। बोल को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है रविंद्र चैन ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गाना। और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त हुआ।

0: आयुषिनी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही पलों में।
1: ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आज के शास्त्रीय संगीत में हम सुनेंगे अभिराम पाठक को। इनसे हम सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे हैं राम बचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग।

राग देसी में आलाप और धमार गायन अभी हम सुन रहे थे। कलाकार थे अभिराम पाठक। इनके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे रामबचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। और अब इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए उर्दू कार्यक्रम। कंपेयर हैं फौजिया तजी और मोहम्मद हिदायतुल्ला। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्ला। आदाब फौजिया।
0: आदाब हिदायतुल्ला, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और हमारे सामईन भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हिदायतुल्ला, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है और सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, ये आप बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, आप तो एकदम डायरेक्ट आते ही शुरू हो गई डिप्रेशन।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेट अभी हर कोई नजर आता है। बच्चों को देखा जाए तो उनका जो है डिप्रेशन है।
0: बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के सभी लोग तनावग्रस्त हैं।
1: हाँ जी जी, इससे बचने का सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो वो फिजिकली एक्टिविटीज है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, 21 जून को योगा डे मनाते हैं हम लोग। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में योगा के आलमी दिन की तजवीज पेश की थी। 177 ममालिक की हिमायत के बाद अक्वामे मुत्तहदा ने 21 जून को ये दिन मनाने का ऐलान किया। 21 जून का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये साल का सबसे तवील दिन होता है।
1: बिल्कुल फौजिया, योगा नहायत ही जरूरी है हर किसी के लिए, इसलिए कि जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो फिजिकली तौर पर हम सही नहीं रह पाएंगे। और आपकी, चूंकि हम इसी जिस्म से अपनी तमाम जरूरियात जिंदगी को पूरी करते हैं, तो इसलिए इस जिस्म को चुस्त तंदुरुस्त सेहत याब रखना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक खास वक्त का तायुन करें, मुकर्रर करें। और उस खास वक्त में सबसे अच्छा वक्त जो होता है फौजिया, वो सुबह के वक्त का होता है और शाम के वक्त का होता है। तो सामिन, ये दोनों वक्त में आप अपने सेहत के लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें।
0: इंसान की जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए योगा की अहमियत को हम बहुत ज्यादा उजागर करते हैं।
1: जी, और इसके साथ फौजिया, ढलती उम्र के जो लोग हैं, जो 40 क्रॉस कर गए, उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो योग करें, एक्सरसाइज करें और खुद को बिल्कुल फिट रखें।
0: आप खुद ही देखिए हिदायतुल्ला, अभी का जो दौर चल रहा है और पहले के जमाने के दौर के लोगों को, इंसान को देखिए, कितने सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते थे, बाहर निकलते थे घर से और ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा लेते थे और मेहनत मुशक्कत करते थे। हम अभी अपने घर का काम ही देख लें कि सारे काम हम मशीन से करते हैं, खड़े होकर गैस पे खाना पकाते हैं, कपड़ा मशीन से धोते हैं, मिक्सी में मसाला पीसते हैं। और पहले की खवातीन सारे काम खुद से करती थी, चूल्हा जलाकर सील पे मसाला पीस के, इसलिए वो बहुत ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। तो इसीलिए 21 जून को ये दिन मुकर्रर किया गया है कि हम अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा पे इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, देखिए पहले फिजिकली काम ज्यादा था और अब फिजिकली के साथ साथ मेंटली काम भी है। ये दौरे जदीदियत पूरी तरह से मशीनरीज हो गया है, इसलिए आज ज्यादा जरूरी है योग करने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और योग के साथ साथ अगर सामीन बात किया जाए, नशे का लत जो है बढ़ते जा रहा है, तो इस नशे के लत को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए?
0: बिल्कुल हिदायतुल्ला, आपने बहुत सही कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक ऐसी लानत है जो इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत और सेहत सबको तबाह व बर्बाद कर देती है।

0: ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। भूखे पेट कोई ना सोए, आँख न कोई नम हो,
1: क्या बात,
0: हाँ आँख न कोई नम हो, चेहरे पे मुस्कान हो बिखरे, कहीं न कोई गम हो,
1: बहुत खूब,
0: कहीं न कोई गम हो, पूंजी हो इखलास वफा की, भले ही दौलत कम हो, हाँ भले ही दौलत कम हो, घर अपना हो अमन का मंदिर, खुशियों का मौसम हो, हाँ खुशियों का मौसम हो, ओ खुशियों का मौसम हो, इधर बजे मंदिर से घंटी, उधर से हो आजान। ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान। ऐसा हिंदुस्तान बनाए,
1: ऐसा
0: हिंदुस्तान। और ये भी
1: जी,
0: ये भी मंजरनामा एक सामने रख रहा हूँ कि माना के गर्दिश में पड़ा है अपना हर एक सितारा, अपना हर एक सितारा, रोशन कोई राह नहीं है, हर सु है अंधियारा, हर सु है अंधियारा, जाने कब पूरा होगा बरसों का ख्वाब हमारा, बरसों का ख्वाब हमारा, मुल्क के हर गोशे में गूंजे प्यारो वफा का नारा, हाँ प्यारो वफा का नारा, बात करेंगे अमनो अमा की, हो जित

0: हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी काश के ऐसा भी होता
1: बिल्कुल,
0: जहाँ ना हो मजहब की दीवारें और न कोई दंगा,
1: क्या
0: और न कोई दंगा, हर हाथों को काम मिले हो पढ़ा लिखा के लफंगा, हाँ पढ़ा लिखा के लफंगा।

0: अपना तिरंगा। इंसानी रिश्तों से महके घर आंगन दालान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी बन
1: इरशाद,
0: आओ अपने देश को मिलकर ऐसा देश बनाए, हाँ ऐसा देश बनाए, रंग बिरंगे फूलों से हम इसकी मांग सजाएं, हाँ इसकी मांग सजाएं, एक है हम और एक रहेंगे दुनिया को बतलाएं, हाँ दुनिया को बतलाएं, मिलके करेंगे देश की रक्षा जैसी भी आफत आए, हाँ जैसी भी आफत आए, अब न बटेंगे हम आपस में, जाए तो

0: हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान।
1: बिल्कुल कुदरतुल्ला साहब, आपका गज़ल बहुत ही खूबसूरत है और इससे मुतासिर होकर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि तुम्हें सब मजहबों की आज़मतों का ध्यान रखना है।
0: क्या बात है,
1: तुम्हें सब मजहबों की आज़मतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना,
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं पूजा भी,
0: बिल्कुल,
1: मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं
0: पूजा भी,
1: यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना,
0: आए है, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है।
1: आओ हम पेश करें जी,
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें,
1: बिल्कुल,
0: काश के मेरा हिंदुस्तान ऐसा होता,
1: ऐसा ही होगा
0: और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा,
1: ये
0: मैं पूर्ण उम्मीद हूँ और ये शेर पहुंचा रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें, ना नफरत की बातें, सदा रहे जीवन में अपने खुशियों की सौगातें, हाँ खुशियों की सौगातें, माना के है धर्म अलग और अलग अलग हैं जातें, हाँ अलग अलग हैं जातें, ऐसे में हो प्यार वफा की बरसेंगी बरसातें, बरसेंगी बरसातें, भरा रहे हर रंग के फूलों से अपना गुलदान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए।

बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और आखिरी बन, मुफ्त के राशन से ऐ कुदरत जान छुड़ानी होगी, हाँ जान छुड़ानी होगी। अपनी रोजी रोटी खुद मेहनत से कमानी होगी, मेहनत से कमानी हो

0: सीता वो मरियम जोहरा की लाज बचानी होगी, हाँ लाज बचानी होगी, हो लाज बचानी होगी। तब जाकर दुनिया में बनेगी अपनी अलग पहचान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, हाँ ऐसा हिंदुस्तान हो ऐसा हिंदुस्तान।
1: बिल्कुल सामीन, ये इतना अजीम, इतनी खूबसूरत, हसीनो जमील मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। महासागर की तरह गहराई और हिमालय की तरह बुलंदी इसमें देखी जा सकती है। इसे अजीम बनाने में किसी एक कौम या एक शख्स का हाथ नहीं है। ये गौतम से लेकर गांधी तक, जिसमें चिश्ती भी आते हैं, नानक भी आते हैं, टैगोर भी आते हैं, अल्लामा इकबाल भी आते हैं, मीरो गालिब भी आते हैं, तुलसी और मीरा भी आती हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। एक दो दिन में ये मुल्क नहीं बना है। अगर किसी के कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो हिंदुस्तान के तहजीबी सरबुलंदी पर दाग लगाना।
0: गजल के चंद अशार। वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा,
1: जरूर जरूर।
0: जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा, और जाने कब

0: घर से रुखसत, जाने कब होगा अंधेरा मेरे घर से रुखसत, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा। और ये भी शेर सुन ले कि जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मेरा हक है वो एक रोज मगर
1: बहुत खूब,
0: आएगा,
1: बहुत खूब।
0: जो मेरा हक है वो एक रोज मगर आएगा, फिर मेरी आंखों में आ जाएगी पहले सी चमक, फिर मेरी आंखों में आ जा

0: कोई शामो शहर आएगा, फिर
1: बहुत खूब,
0: लिए
1: बहुत तारीफ।
0: फूल कोई शामो शहर आएगा। अब तो आदत सी हुई जाती है तन्हाई की,
1: क्या बात।
0: अब तो आ

0: आई की फिर भी लगता है कोई यार नजर
1: बिल्कुल
0: आएगा, फिर
1: बिल्कुल
0: भी लगता है कोई यार नजर आएगा।
1: बहुत खूब
0: और
1: बहुत
0: जब
1: खूब।
0: हवाएं तेरे आने की खबर लाएंगी, नौजवानों के लिए शेर है भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जब हवाएं तेरे आने की खबर लाएंगी, जब हवाएं

0: उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, हम ये कहने पर मजबूर हैं सामीन कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर। आपकी जो गजल है उसी से मिलता जुलता हम ये शेर कहेंगे कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर, हाँ इतनी गुजारिश है कि मेरे दिल में रहा।
0: क्या बात है, वाह वाह
1: जी। चलिए आप
0: गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा, रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा। और ये भी खासकर तवज्जो का तालिब है कि मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा। और मक्ते का शेर कि एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत,
1: क्या बात है,
0: एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, क्या वो एक रोज मुझे

0: नया दौर जफर आएगा, जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा। बहुत शुक्रिया।
1: तो सामईन, अभी आप कलामी शायर के तहत समात फरमा रहे थे जनाब कुदरतुल्ला कुदस से उनके चंद खूबसूरत गजल। और सामईन, उनके गजल से मुतासिर होकर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उदासी के पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। उदासी के पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो मंजर बदलना चाहते हैं।
2: बिल्कुल फौजिया, और स्टूडियो की घड़ी अब हमें मजीद बातें करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए सामईन आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला
1: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दे इजाजत। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, सूत्रधार फौजियाता जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रस्तुति प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सभी दोस्तों को रेणु
1: और ऋतुश्री का प्यार भरा
0: नमस्कार जोहार। और तो ऋतु कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
1: बिल्कुल, जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा।
0: और जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे।
1: जैसे ही सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं गायब हो जाती हैं।
0: मतलब कि मन की शक्ति इतनी मिले कि हम कोई भी काम करने में सक्षम हो और आगे बढ़ते जाएं।
1: बिल्कुल।

0: ऋतुश्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये मौसम का आनंद लेते हैं। ये सुबह से ना गजब का रांची में मौसम झमाझम बारिश,
1: बहुत अच्छा मौसम हो गया क्योंकि अभी पिछले दो दिनों से काफी तेज गर्मी थी
0: और इस साल
1: जो बारिश है ना ये बहुत ही राहत की बारिश है।
0: हाँ, इस साल तो 1 से 17 जून के बीच ना काफी कम बारिश हुई है।
1: हाँ,
0: और झारखंड में सामान्य से काफी कम हुई है, लेकिन इधर
1: अब लेकिन देखिए आज से हो सकती है कि ये बारिश में थोड़ी बढ़ोतरी हो। संथाल और कोल्हान समेत रांची और इसके आसपास के जिलों में अगले दो दिनों आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान ये भी संभावना जताई गई कि इस दौरान तेज हवा के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इससे राज्य के ऊपर आ चुके कमजोर मॉनसून को आगे बढ़ने में कुछ हद तक मदद मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
0: और मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम में बदलाव का असर पलामू समेत आसपास के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। बादल छाने से पलामू, गढ़वा, चतरा समेत अन्य जिलों के तापमान में कमी आने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में संताल और कोरहान के सभी जिलों समेत रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग में हवा अधिकतम 60 डिग्री किलोमीटर की गति से चल सकती है।
1: हाँ, और ये जो ये भी बताते चलें कि मानसून का ये जो ट्रफ पूर्ववत तटवर्ती भागों तक निम्न दबाव में आ गया है और झारखंड से आंध्र के तटवर्ती भागों तक एक निम्न दबाव कायम है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए विदर्भ और तमिलनाडु से गुजर रहा है। मानसून का ये जो ट्रफ पूर्ववत है ये हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, कोरापुट, फुलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से गुजर रहा है, इसलिए बारिश हो रही है।
0: और राज्य में अगले दो दिन रांची समेत संताल और कोल्हान में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार। और मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: हाँ।
0: और तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
1: हाँ, और मौसम का आनंद लीजिए लेकिन सावधानी के साथ।
0: और ऐसे में बारिश हो रही है तक कि ना
1: कुछ अच्छे गानों का आनंद लिया जाए।
0: बिल्कुल।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं आज क्या क्या हुआ और किन महापुरुषों का जन्म हुआ, किन का निधन हुआ।
1: तो आज के ही दिन 1871 ईस्वी में माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे।
0: उच्च शासकीय नौकरी और वकालत का प्रस्ताव मिलने के बावजूद उन्होंने देश सेवा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को चुना।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर माधवराव सप्रे ने 1907 ईस्वी में नागपुर के मराठी समाचार पत्र केसरी का हिंदी संस्करण निकालना शुरू किया। इसका नाम रखा हिंदी केसरी।
0: हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे माधवराव सप्रे।
1: उन्हें हिंदी की पहली मौलिक लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी का लेखक माना जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
0: उन्हें करते हैं नमन।

0: और आज को याद करते हैं एक दिवस के रूप में, तो 19 जून को मुख्य रूप से विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ, और इतिहास में आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि आज किनका निधन हुआ। तो भारतीय मिमिक्री कलाकार निरेला वेणु माधव का निधन 2018 ईस्वी में आज के दिन ही हुआ था।
0: और भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक चिकित्सक और वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन 1981 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ।
1: सुभाष मुखर्जी हजारीबाग बिहार और उड़ीसा प्रांत झारखंड में भारत के एक भारतीय वैज्ञानिक चिकित्सक थे जिन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके दुनिया का दूसरा और भारत का पहला शिशु बनाया।
0: उन घरों को रोशन किया जहां कोई संतान न थी, उन माँ बाप को खुशी दिए जो निसंतान थे, बच्चों की किरकारी घर में गूंजी, उन्होंने ऐसा करके चले गए, घर में दिल में बाहर आए, ऐसा उन्होंने किया। उन्हें देते हैं श्रद्धांजलि भाई, जिन्होंने आज सुने कोख को मातृत्व सुख दिया।
1: बिल्कुल, और जो निसंतानता की समस्या से जूझ रहे थे उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई,
0: और घर में इस तरह के कई घर इस तरह से गूंज रहे हैं किरकारियों से जो उनका प्रभाव आज देखने के लिए मिल रहा है।

0: ऋतुश्री, आपके पोशाक देखकर ख्याल आ रहा है कि आज कुछ है।
1: बिल्कुल, आज 19 जून है और 19 जून का हम सब मनाते हैं विश्व एथनिक दिवस।
0: अरे वाह, देखिए उसी पर ख्याल आ रहा था कि कुछ अलग तो है क्योंकि आप भी काफी सज सज के उसी पोशाक में आई हैं।
1: हाँ हाँ। देखिए ये जो दिवस है ना, ये दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर देती हैं और दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को देखने से मिलती हैं। इन्हीं संस्कृतियों का सम्मान और उनके बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को दुनिया भर में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है
0: और ये विशेष दिन हमें अपने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि विश्व एथनिक दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी,
1: लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दिवस को मनाए जाने का आइडिया सबसे पहले मुंबई स्थित ऑनलाइन जातीय उत्पादों के बाजार craftsvilla.com द्वारा पेश किया गया था और ये एक महत्वपूर्ण दिवस है जो हमें विभिन्न सभ्यताओं, भाषाओं, कलाओं, परंपराओं से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है।
0: ये दिवस लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित करता है।
1: हाँ, और ये दिवस हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रेरित करता है
0: और ये दिवस विभिन्न संस्कृतियों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देता है।
1: हाँ,
0: अब मन में सवाल उठता है कि कैसे इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाए, है ना?
1: हाँ, देखिए मैं तो सेलिब्रेट कर रही हूँ और आपको देख के लग रहा है कि आप भी
0: हम तो कर ही रहे हैं।
1: तो बताते हैं कि इस दिन आप विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बारे में पढ़ें, उनके इतिहास, रीति रिवाज, भाषाओं और व्यंजनों के बारे में जानें,
0: विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाने वाली फिल्म देखें,
1: अपनी संस्कृति के बारे में दूसरों को भी बताएं और उनसे कुछ सीखें भी,
0: और विभिन्न संस्कृतियों को लोगों से बात करें।
1: हाँ, संस्कृतियों के मामले में वैसे तो भारत दुनिया का सबसे धनी देश है। भारत की खासियत उसकी संस्कृति और संस्कार ही है।
0: ऐसे में कुछ प्रमुख भारतीय राज्यों की पारंपरिक पोशाकें के बारे में आपको बताते हैं और आपको पता भी है कि कहाँ क्या पोशाकें प्रचलित
1: हैं। हाँ, और भारत की जो पोशाकें हैं वो सामान्य दिनों में भी पहनते हैं और पारंपरिक पोशाकों की भी एक श्रृंखला है।
0: हाँ, जैसे कश्मीर की पारंपरिक पोशाक है फिरन।
1: हाँ,
0: ये पोशाक पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है।
1: हाँ, और देखिए अपने राज्य झारखंड में जो पोशाक हम पहनते हैं

0: ये किसी किसी खास अवसर पर आप देखती होंगी कि लाल पाड़ की साड़ी, उसमें सफेद साड़ी रहती है, लाल पाड़ उसमें बना होता है, तरह तरह के ब्लाउज होते हैं, और लड़के जो होते हैं वो धोती, गमछी और कुर्ता पहनते हैं, साथ में सर पे पगड़ी लगाते हैं, जो बहुत ही देखने में
1: ये
0: अच्छा
1: तो
0: लगता
1: है।
0: है।
1: और यहाँ की अपनी अलग ही संस्कृति है।
0: हाँ,

0: और रेनू देखिए, कुदरत ने हमें कई नेमतें दी हैं, जिसमें फल और फूल सबसे बड़ी नेमत हैं। फूलों को देखकर हमें जितनी खुशी होती है, वैसे ही अच्छे ताज़े फलों को खाकर हमें बड़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है।
1: और अभी तो भाई आम का सीजन है, जो चारों तरफ चहुओं छाया हुआ है।
0: हाँ, और आम फलों का राजा होता है। और अभी आप अगर बाजार से गुजरेंगी ना, तो हर जगह आपको आम की एक मीठी मीठी खुशबू

0: आपको आपके नाकों में चली जाएगी।
1: हाँ, स्वाद का पता चल जाता है ये कौन सा आम है।
0: हाँ।
1: आम के कई किस्में हैं उसमें हैं। और ये बताते हैं रितु सी कि देखिए मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव से महिलाओं
0: की तकदीर बदल दी है।
1: हाँ।
0: ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के अनूठे संगम ने ये प्रमाणित कर दिया है कि यदि हम दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत एक साथ मिला लेना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।
1: इसी सोच और कड़ी मेहनत से प्लस ब्रांड के तहत झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ग्रामीण महिलाओं और किसानों की तकदीर बदल रही है। आज झारखंड का आम न केवल देश के बड़े रिटेल चेन बल्कि सात समंदर पार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मिठास घोल रहा है।
0: हाँ, और बड़े पैमाने पर फलदार पौधारोपण और स्थायी आजीविका के रूप में ये ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। ये कोरोना संक्रमण काल में हुई थी, जो अब जाकर आम के वृक्ष जो हैं वो बड़े हुए और बहुत फल लगे। तो ये संक्रमण काल में जो लोग अपने गांव लौटे थे ना, ये प्रवासी श्रमिकों ने भी इस योजना को अपने आजीविका का साधन बनाया था।
1: और इसका असर आज साफ दिख रहा है कि राज्य के करीब 2.25 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे लहलहा रहे हैं और जिससे लगभग 2.25 लाख ग्रामीण परिवारों के सीधे तौर पर अस्थायी आजीविका और रोजगार के अवसर मिले हैं।
0: हाँ, और ये भी हम बता दें कि ग्रामीण महिलाओं को ये मेहनत से ही पलाश सम्मान मिला है। और
1: दुबई से लेकर लंदन तक पहुंचा। हाँ, है झारखंड का आम।
0: हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। झारखंड के आम के भी अब वैश्विक पहचान बन गई है।

0: और देखिए रेनू, होता क्या है ना कि हम बातें कर रहे थे आम की,
1: हाँ
0: तो जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है उसे हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर
1: कर
0: देते
1: देते
0: हैं,
1: हैं
0: और इससे
1: सब
0: क्या होता
1: सब
0: है,
1: कोई तबीयत भी खराब हो जाती है, अस्वस्थ
0: हाँ
1: हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो ऐसा है कि
1: बरसात का
0: हाँ
1: मौसम,
0: मौसम है तो
1: बरसात में के बाद जो गर्मी आती है ना, उसमें और ज्यादा उतार चढ़ाव के कारण तबीयत खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है।
0: हाँ, तो इसके लिए हमें डाइट से लेकर अपने वर्कआउट की टाइमिंग
1: तक
0: तक को ध्यान देना जरूरी
1: हाँ
0: है।
1: विशेष बदलाव करनी होगी,
0: हाँ
1: कि बरसात के बाद जो ये गर्मी का जो तेज धूप और पसीना जो है
0: हाँ
1: ना, वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड से मरीजों के लिए जोखिम बढ़ा देते हैं।
0: हाँ तेज गर्मी, ज्यादा पसीना और डिहाइड्रेशन शरीर का संतुलन बिगाड़ देते हैं, और इससे हमें बच के रहना है। ऐसे
1: हाँ
0: एक रिसर्च बताता है कि अधिक तापमान शरीर के कार्डियोमेटाबॉलिक सिस्टम को भी प्रभावित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और दिल पर दबाव पड़ सकता है।
1: हाँ तो ऐसे में करना ये है हम लोगों ना ऋतु, कोई डायबिटीज के इंसुलिन की जरूरत बदल सकती है ऐसे
0: हाँ
1: मौसम में।
0: हाँ हाँ
1: बीपी या दिल के मरीजों की दवाइयाँ
0: ये
1: जो
0: चेंज
1: है
0: हो
1: कुछ
0: सकती है।
1: चेंज हो सकता है,
0: हाँ
1: उसे डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है।
0: हाँ
1: कुछ दवाइयों का असर जो है ना गर्मी में बदल सकता है। बदलाव डॉक्टर की सलाह से करें, जो भी अभी ऐसा नहीं हो कि अब डिहाइड्रेशन हो रहा है अपने मन से कुछ ले लिए,
0: हाँ
1: हमेशा डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई ले रहे हैं तो
0: डॉक्टर की सलाह
1: थोड़ा
0: बहुत
1: सही है।
0: ज़रूरी होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हाइड्रेशन बनाए रखना ज़रूरी है,
1: हाँ
0: डिहाइड्रेशन नहीं होने दे। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि खून गाढ़ा होने लगता है और ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, शुगर और बीपी जो होता है वो असंतुलित हो जाते हैं। रोज़ाना दिन में करीब 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हार्ट और किडनी के मरीज पानी की मात्रा पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही उसे पिए।
1: और इन दिनों में आप एक्टिव ज़्यादा रहें, एक्सरसाइज सुबह जल्दी या शाम के समय करें, 10 बजे से 4 बजे तक, जब भी धूप ज़्यादा हो। और अभी के मौसम में खासकर गर्मी, जो बरसात के बाद गर्मी होता है ना, चिपचिपाहट होता है ना,
0: हाँ
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: में अपने को संभाल कर रखिए, शरीर को हाइड्रेट रखिए और हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनिए। ज़्यादा थकान होने पर तुरंत रुक जाइए, ऐसा नहीं हो कि
0: हाँ
1: लग रहा है तो अच्छा 2-4 डे और चल लेते हैं
0: नहीं, ऐसा
1: ऐसा।
0: तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही रेणु जी, इन लक्षणों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा थकान हो, चक्कर हो, सर दर्द हो, उल्टी हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, भ्रम हो, या बहुत ज़्यादा प्यास या शुगर का अचानक बढ़ना या घटना, सांस फूलना, सीने में दर्द और धड़कन तेज होना, इन लक्षणों को तो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: और अपने खान पान में भी जरूरी कुछ बदलाव कर लीजिए, जैसे पानी से फल फूल

0: भरपूर फल सब्जियां है उसको खाइए। इन दिनों हल्का और कम खाना बेहतर होता है। केले जैसे पोटासियम वाले फूड लें। तला भुना मसालेदार मीठा और चाय कॉफी से बचें।
1: हाँ, और इन सब से बचने से हम और भी लाइफस्टाइल डिजीज जिन्हें हम कहते हैं वो उनसे हम बच जाएंगे।
0: हाँ, और कुछ भी खान पान पे है, पीने का ही शौक है तो आप खाने के बाद वो छाछ जो है मट्ठा है
1: हाँ
0: घर में मत कर उसको पीजिए, नींबू पानी, चीनी
1: पीजिए,
0: नमक
1: बेल का
0: पानी।
1: शरबत आप ले सकते हैं।
0: हाँ, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं कि अपने घर में बना कर ले सकते हैं। अभी तो कच्चा आम भी मिल रहा है, उसका आम झोरा खट्टा मीठा बनाकर उसको ले सकते हैं। और
1: ये
0: मतलब
1: हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखता है,
0: हाँ, और पानी का मात्रा आप
1: वो बढ़ाना
0: भरपूर लें,
1: होगा।
0: भरपूर लें।

चॉकलेट लाइन जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे अब मेरे शौक है कहां गुड़िया खिलौने।

0: तो बातें अब थोड़ी खेल के कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ बिल्कुल। तो ये बता देते हैं कि हॉकी में भारत ने जर्मनी को हराया और ये लगातार उसकी दूसरी जीत है।
0: और नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत महिला हॉकी की हुई, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जा रहे नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। तो और विकास कुमार ने नाबाद 79 रन किया, धनबाद डायमंड्स की पहली जीत हुई। झारखंड T20 क्रिकेट लीग संथाल स्काइडर्स को 7 विकेट से हराया।
1: और इधर ये भी बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप में विश्व कप के शुरुआती 24 मुकाबलों के टीमों के जो कोच हैं उनकी मिडफील्ड की मजबूती सफलता दिला रही है।
0: तो अब
1: हाँ, सब अपने अपनी सफलता के झंडे गाड़ते रहे। हाँ। और हम भी आगे बढ़ते हैं और दोस्तों को लिए चलते हैं
0: सैर की दुनिया में।
1: बिल्कुल। तो चलते हैं नेतरहाट।
0: अच्छा, जो सुंदरता और शांत वातावरण जहाँ लोग प्रकृति के करीब आते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त करते हैं, वहीं ले जाने वाली हैं आप।
1: बिल्कुल। नेतरहाट एक ऐसा जगह है ना जिसे नेचर हट कहते थे। अच्छा। अंग्रेज के जमाने में।
0: अच्छा।
1: प्रकृति यहाँ अब दोनों हस्तों से, मुक्त हस्तों से अपनी सारी जो संपत्तियां हैं वो वहाँ यहाँ डाल दी हैं। अच्छा। तो ये लातेहार जिले में पड़ता है और झारखंड में बसा ये बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं।
0: छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट झारखंड की राजधानी रांची से 156 किलोमीटर पश्चिम में लातेहार जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और समुद्र से तल से लगता है लगभग 3514 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में सालों भर ठंड का मौसम बना रहता है।
1: हाँ। और इसलिए गर्मी में भी लोग यहाँ आते हैं और पर्यटकों की भारी भीड़ बनी रहती है।
0: और यहाँ का सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियाँ और झरनों के गीत, हरे भरे शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
1: हाँ। और सड़क मार्ग से आने के दौरान घाघरा नेतरहाट मार्ग से गुजरने के क्रम में पहाड़ियों पर बने टेढ़े मेढ़े रास्ते किसी वाहन की सवारी आपको रोमांचित कर देती है।
0: नेतरहाट शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि नेटूर यानी बांस और हाथू हाट मिलकर ये शब्द बना। प्राचीन समय में यहाँ बांस का जंगल था जिस कारण इसका नाम नेतरहाट पड़ गया।
1: हाँ। और एक मत के अनुसार वर्ष 1901 में जब अंग्रेज नेतरहाट पहुंचे तो उस समय गर्मी का मौसम था, लेकिन नेतरहाट में अंग्रेजों को गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। इससे प्रभावित होकर जो तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड ग्रेट ने नेतरहाट को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया और इस क्षेत्र को विकसित किया। और शिक्षा का तीर्थ नेतरहाट का सबसे बड़ा गौरव है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जिसे 15 नवंबर 1954 को स्थापित किया गया था। इसकी योजना श्री एफ जी पियर्स ने बनाई थी, जिसे 1952 में बिहार सरकार की मंजूरी मिली।
0: और नेतरहाट की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है शैले हाउस और लोअर घाघरी जलप्रपात, अपर घाघरी जलप्रपात और
1: मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। यहाँ से खड़े होकर आप सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों का ही आनंद आप ले सकते हैं।
0: तो ये तो बहुत दूर नहीं है, जाने की योजना अपने दोस्तों के साथ कहीं भी बना सकते हैं। हाँ। और घूम सकते हैं और गीत संगीत का आनंद लेते हुए जा सकते हैं।
1: हाँ।

0: हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आप सब श्रोताओं का भी इसी तरह से हंसते हंसते कट जाए रास्ते भाई, यही हम लोग शुभकामना देते हैं।
1: हाँ, और देखिए जोहार रांची का वक्त भी अब यही समाप्त होने की ओर है, तो अपने श्रोताओं से कहते हैं जो

0: जौहर, नमस्कार, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शुरुआत करते हैं फिल्म दिलवाले के इस गीत से। कुमार सानू की आवाज है, समीर ने इस गीत को लिखा, संगीतवत किया नदीम श्रवण ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर, बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्ल्यू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती

उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बरविंदर वीरक, जय तेग वीरक और बीका वीरक। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों से ये गाना। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की है। शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीतवत किया नदीम श्रवण ने।

येसुदास की गीत संगीत रविंद्र जैन का झारखंड बड़ा बांबो से आप हैं सुबह देवेंद्र ताती राकेश ताती निशा प्रकाश देवेन चक्रधरपुर से गेलिया लोहर कोमल बेसरा वासंती अनु परमाली पूजा और सिंधु कुमारी आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म बाबुल से ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गाना आप श्रोताओं के नाम जतुका किशनपुर से आलम दिलकर शवाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख चांदनी नाज आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना।

इसी गीत के साथ फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: माता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और आज मेरे साथ हैं मेरी सखी राखी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए अपनी सखी राखी का भी नमस्कार। हम जानते हैं कि हमारी सखियों को हमारा इंतजार रहता है, जिस तरह हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं ना निधि।
0: हाँ राखी, तुमने सही कहा। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई, अब लेकर हम हाजिर हैं बहनों के लिए गृहलक्ष्मी। और राखी, हम अपनी सखियों से एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। एक ऐसा धागा जिसके माध्यम से हमारे विचार बहनों तक पहुंचते रहते हैं और हमें भी करीब करीब ये अंदाजा है कि बहनों की पसंद क्या है।
0: बिल्कुल। और राखी, ऐसा लगता है मानो हम उनके मन को पढ़ सकते हैं। सच है ये बात कि कभी कभी बिना शब्दों के ही हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा देते हैं।
1: हाँ निधि, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार उठते हैं और सबका नजरिया भी एक जैसा नहीं होता। मतभेद होना एक स्वाभाविक सी बात है ना?
0: बिल्कुल। और यही मतभेद लेकिन जब रिश्तों में खटास पैदा करने लगता है, हम एक दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते, सम्मान नहीं करते, तो यह मनभेद का रूप ले लेता है।
1: सही कहा। मतभेद और मनभेद मानवीय संबंधों में आने वाली दो अलग अलग स्थितियां हैं। मतभेद विचारों की भिन्नता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन मनभेद लोगों में दूरी और द्वेष को बढ़ावा देता है।
0: बिल्कुल। और मतभेद तो भाई प्राकृतिक है, यह स्वस्थ चर्चा का आधार हो सकता है। इससे रिश्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया हो सकता है। और मतभेद से बल्कि दूसरों के विचारों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं।
1: हाँ,
0: और हम अपने विचारों के ऊपर भी सोच विचार करते हैं।
1: हम मनभेद की बात अगर करें तो ये विचारों के टकराव से पैदा होता है। जब हम दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते, या अहंकार या द्वेष भी पैदा होता है, हमें लगता है कि हमेशा हम ही सही हैं।
0: हाँ, और इससे संबंधों पर नकारात्मक असर तो पड़ता ही है। दूरियां बढ़ जाती हैं, आपसी संवाद भी खत्म होने लगता है। मनभेद तब भी होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, हम उसके विचार का सम्मान कर ही नहीं पाते और हम पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि अगर उसने कुछ कहा है तो ये जरूर ही गलत होगा।
1: विचारों का अलग होना या मतभेद होना प्रगति और समझदारी का हिस्सा है, लेकिन जब यह मतभेद अहंकार में बदल जाता है तो यह मनभेद का रूप ले लेता है। जीवन में मतभेद को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मनभेद से हमेशा बचना चाहिए सखियों।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मतभेद और मनभेद जो है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें अपने जीवन में किसको उसका हिस्सा बनाना चाहिए और किसको नहीं, ये हमें बहुत सावधानी से तय करने की जरूरत है।
1: और हर किसी के दृष्टिकोण को बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। अपना दृष्टिकोण किसी पर थोपे नहीं। हाँ, अपनी बात आप तार्किक तरीके से, भावनात्मक तरीके से कर सकते हैं ताकि दूसरे समझ सके, लेकिन दूसरे के विचारों को बिल्कुल नकार देना भी सही नहीं है।
0: और हमें दूसरों की भावनाओं के बारे में भी सोचनी चाहिए राखी। और कैसा लगता है जब हमारी वजह से हम ऐसा कुछ करते हैं, भले ही वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, और उससे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो?
1: और हम उन मुस्कुराहटों पर निसार हो जाते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस।

0: समझ गया।
1: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और निधि। और निधि, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ जानकारियों के साथ, है ना?
9: हाँ, तो प्रस्तुत है भेंट वार्ता और बहनों आज का विषय है समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। तो किस समस्या के ऊपर हम बातें कर रहे हैं ये हम जानेंगे भेंट वार्ता के अंतर्गत। और आज की हमारी मेहमान हैं शिल्पा शिवांगी और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
10: बहनों, युद्ध, संघर्ष और अशांति की स्थिति में होने वाली यौन हिंसा एक गंभीर मानवीय समस्या है। यह व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक अभिशाप है। सबको मिलकर इस विषय में सोचना होगा कि हम समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। आइए आज इस विषय पर हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं। आप हैं शिल्पा शिवांगी। आप विधि शिक्षण से जुड़ी हैं और रांची के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
11: नमस्कार राखी जी, मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वार्तालाप के द्वारा मैं अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुँचा पाऊंगी।
10: जी, तो हम सीधा विषय पर आते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि यौन हिंसा क्या है और इसके प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है।
11: यौन हिंसा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी नुकसानदेह या अनचाहा यौन कृत्य जो एक व्यक्ति के मर्जी या उसकी सहमति के विरुद्ध किया गया है या कोई यौन संबंध उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ बनाया गया है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ यौन हिंसा हुई है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्त्री या पुरुष किसी के साथ भी हो सकता है और इसका प्रभाव न केवल शरीर पर बल्कि आपको पीड़ित के मन पर भी दिखेगा। रही बात इसके विषय में जागरूक होने की, तो मैं कहना चाहूंगी कि जागरूकता वो कड़ी है जिसकी मदद से हम यौन हिंसा से लड़ सकते हैं या उसके दुष्प्रभाव से अपने समाज को बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक आजादी और सम्मान का उल्लंघन उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है। एक समाज के रूप में अगर हमने यह जागरूकता आ गई तो हमें इस चीज से लड़ने का भी जो समाधान है वो मिल जाएगा।

0: संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं या बच्चे यौन हिंसा का शिकार बन जाते हैं। इसका आशय कभी-कभी प्रतिशोध भी होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: जी मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, यौन शोषण जो है यह समाज की जो न्याय व्यवस्था है उसको सीधा सीधा चुनौती देता है। और जैसा कि हम सब समझते हैं, समृद्ध महिलाएं एक समृद्ध समाज का प्रतिबिंब होती हैं। ऐसे में यौन शोषण केवल एक अपराध नहीं होता। अगर आप युद्ध के स्तर पर देखें, जब कई बार कई देशों के बीच युद्ध होता है, वॉर एग्रेशन चल रहा होता है, ऐसे में यौन शोषण एक रणनीति के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल यौन इच्छा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, क्योंकि युद्ध यह दर्शाता है कि आबादी पर नियंत्रण दिखाया जा सकता है। और ऐसे में यौन शोषण खास करके महिलाओं के प्रति नागरिकों में दहशत तो फैलाती ही है, और साथ में उन्हें अपमान का पात्र भी बना देती है। यह साथ के साथ उस देश की सुरक्षा प्रणाली को भी नष्ट करने का काम करती है। तो यह सीधा सीधा उस देश के नागरिकों के केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर वार है। इसलिए हम अक्सर देखेंगे कि जब भी युद्ध होता है या युद्ध जैसी परिस्थितियां होती हैं, तो महिलाएं और बच्चे इसका शिकार हो ही जाते हैं।
0: ये भी देखा जाता है, जैसा आपने कहा, कि शरीर की ही सिर्फ बात नहीं होती बल्कि उनके मन पर असर होता है, उनके आत्मसम्मान पर आघात होता है। तो इस मामले में पीड़ित जो हैं वो अक्सर सामने आने से डरते हैं या फिर संकोच करते हैं, झिझक है उनमें। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए?
1: राखी जी, मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी श्रोताओं से भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे वास्तव में पीड़ित है कौन? क्या वह यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ व्यक्ति, या हमें स्वयं से भी यह प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या केवल वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यौन शोषण हुआ वही पीड़ित है, या हम सब एक समाज के रूप में पीड़ित हैं? हम अक्सर उस व्यक्ति को यौन शोषण होने के बाद समाज का एक कटा छटा बहिष्कृत टुकड़ा मान बैठते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति जो है वह तो अपराध बोध और दबाव से घिर जाता है, और वह स्वयं इतना अपमानित और इतना हीन महसूस करता है कि उसके लिए समाज में खुलकर रह पाना, जी पाना, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर पाना, एक शिक्षक बन पाना, एक डॉक्टर बन पाना, किसी की पत्नी बन पाना, यह कितना कठिन होता है, यह मैं और आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो कारण है, ये मूल कारण यही है कि पीड़ित अक्सर सामने नहीं आना चाहते।
0: स्वीकार किया जाएगा, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हम बात कर रहे हैं कि समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। इस संदेश को सरल
1: अगर इस बात को मैं श्रोताओं को कुछ इस तरह समझाना चाहूंगी कि हिंसा डालता है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जीवन में जो यौन शोषण उसने अपने साथ देखा होता है, उसे झेला होता है, वह तो उसे शरीर के स्तर पर नुकसान पहुंचाता है, पर समाज के द्वारा अस्वीकृति और कलंकित किया जाना, उसे समाज के द्वारा दरकिनार कर दिया जाना, यह उसे ज्यादा उपेक्षित महसूस कराता है। और वास्तव में जो अपराधी हैं, हम उन्हें समाज से उन्हें हमें उन्हें बहिष्कृत करना होगा, ना कि पीड़ित को। हमें तो पीड़ित से खुलकर बातचीत करनी होगी, और एक समाज के रूप में हमें यह बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि पीड़ा यौन शोषण पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि वहां से शुरू होती है। इससे होने वाला जो नुकसान है, यौन शोषण से जो नुकसान होता है, वो वहां से प्रारंभ होता है, उसके बाद की घटना है। बहिष्कृत होना, कई तरह के आलोचनाओं से गुजरना, तो यह जो आलोचना और घृणा है, ये हमें अपराधियों के प्रति रखनी है, पीड़ितों के प्रति नहीं। और समाज जब इस बात को समझ लेगा, तो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं समाधान का हिस्सा बन ही जाएंगे।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़े सरल शब्दों में समझाया। ये बात लोगों को समझ में आएगी। और अब चलते चलते आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे

0: क्या आपको ऐसा लगता है कि इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए? क्या इससे हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं?
1: राखी जी, मैं आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि खुलकर बातचीत करना यह तभी संभव है एक समाज के रूप में, जब हम अपने मन और चेतना के द्वार को खोल दें, और यह भी तभी संभव है जब हम खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। जो यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति होता है वह पहले तो बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो यह हमारी एक गहरी नैतिक विफलता को दर्शाता है। एक समाज के रूप में हम कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, यह इस बात को दर्शाता है। दूसरी बात यह कि मनुष्य की गरिमा को केवल उसके शरीर से आंकना एक बहुत भारी चूक है। ठीक वैसे ही जैसा कि हम सब जानते हैं, जो अष्टावक्र थे उनका शरीर वक्री था, पर वो ज्ञान और ज्ञान से परिपूर्ण थे। अगर हम इस उदाहरण से इस पूरी परिस्थिति को समझे तो हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति की गरिमा उसके कर्म, उसकी विचारधारा और उसकी चेतना में निहित होती है, इस बात में नहीं कि उसके साथ यौन पीड़न हुआ या नहीं हुआ। और इसलिए वो जो पीड़ित है वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, और उसे भी उतना ही खुलकर जीने का अधिकार है जितना समाज के बाकी लोगों को। तो इस विषय पर खुलकर अगर बातचीत की जाए और इस दिशा में अगर हम अग्रसर रहें तो जरूर हम कोई ना कोई समाधान ढूंढ लाएंगे, और बिल्कुल हमें अपने समाज में एक बदलाव देखने को मिलेगा।
0: जी शिल्पा जी, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पर जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम के द्वारा श्रोताओं से जोड़ने के लिए।
0: जी
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, समाधान का हिस्सा बने समस्या का नहीं। आज संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ानी बेहद ज़रूरी है, और इसी कारण हमने ये भेंटवार्ता अब तक पहुंचाई। आज की भेंटवार्ताकार थी शिल्पा शिवांगी और इनसे बातें की थी राखी शर्मा ने। और राखी, अब बातें तो हो गई, लेकिन हाँ, अब फिर से हमें लगता है कि बहनों को उम्मीद होगा कि हम कोई गीत उन्हें सुनवाएं। हाँ, तो एक सकारात्मक सोच के साथ कि भाई जिंदगी में कोई भी समस्या हो, समाधान कहीं ना कहीं है ही, तो चलिए हम सुनवाते हैं ये गीत बहनों को।

0: निधि, हम अक्सर अपने कार्यक्रम में स्वास्थ्य की बातें करते हैं और कैसे स्वस्थ रहना है इस बारे में कुछ ना कुछ टिप्स बहनों को दिया करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। तो आज भी हम भोजन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य का आधार है। तो यूं तो हम खाना खाते हैं और हमें लगता है कि हम सभी अच्छा खाना ही खाते हैं, लेकिन ये जो भोजन है ये संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित आहार की जो परिभाषा है ये बिल्कुल सही तरीके से हमें जानने की ज़रूरत है। तो संतुलित आहार यानी जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों और पानी भी पर्याप्त मात्रा में हो, है ना?
0: हाँ,
1: तो इसी संतुलित आहार में, लेकिन आज हम बातें करेंगे कि भोजन में सलाद और फल क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है।
0: सलाद और फल जो हैं बहनों, विटामिन का स्रोत हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इस तरह जो है शरीर हमारा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण हो जाता है अगर हम फल और सब्जियां लेते हैं, विटामिन हमारे यहाँ अगर हमारे शरीर में है पर्याप्त तो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और सलाद और फल हमारे शरीर को खनिज और फाइबर भी प्रदान करते हैं।
1: और इन सब से हमारी पाचन क्रिया सही रहती है, जैसे फाइबर की बात तुमने बताई। और फाइबर यानी मैं बता दूं कि रेशा जो होता है फलों में या सब्जियों में भी, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, तो ये रेशा जो है हमारे पाचन तंत्र, पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और शरीर में ये पानी की कमी भी नहीं होने देता, क्योंकि फलों में हम जानते हैं कि बहुत पानी, किसी किसी फल में तो पानी बहुत होता है, करीब 90% तक पानी ही होता है। तो हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि खास करके गर्मियों के दिनों में पानी की कमी जो होती है वो नहीं होती।
0: और हरी सब्जियों और कम कैलोरी वाले सलाद को खाने से पेट जल्दी भर जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि सभी इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाएं।
0: तो बहनों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। इसी के साथ अपनी सखी राखी और
1: निधि को दें विदा। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का होगा, बस थोड़ी ही देर में।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

फिल्म संगीत, शुरुआत करते हैं फिल्म बागी के इस गाने से। आवाजें अमित कुमार और राधा पौडवाल की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

आइए सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना। आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत वत्किया जतिन ललित ने।

आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है एस टी परवन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज है, शब्द रचना आनंद बख्शी के, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म मिली से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। योगेश ने इस गीत को लिखा और संगीत वत्त किया एस टी परमन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन

0: राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नम्बर 9178279807 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाईल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the

0: occasion of World Sickle Cell Day today.
1: National Sickle Cell Anemia Unmulan Mission के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं।
0: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's Permanent Mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
2: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
0: The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET-UG 2026 re-examination on the 21st of June, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. Telegram had challenged the order, alleged discriminatory treatment, and arguing that it had already removed hundreds of links related to unlawful NEET content and cooperated with authorities. In the FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र के प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। IIT ISM धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 के जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का काम जल्द आगे बढ़ाया जाएगा।

0: संजय सेठ ने भरोसा दिलाया कि यह रेलवे लाइन रांची, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, चांडिल और कांड्रा समेत आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रखंड प्रभारी के राजू के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं।
1: जो हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में मतदान किया है, अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी आत्ममंथन करें, इनका बयान हताशा का बयान है, अपने गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे।
0: इधर राजद के बयान पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समीक्षा होगी।
2: क्या कुछ हुआ, समीक्षा हो रही है, सभी बातें छनकर सामने आ जाएंगी, किन परिस्थितियों में किन विधायकों ने वोट नहीं दिया या वोट क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिणाम आए, पहली बार एक दलित, एक हरिजन को राज्यसभा भेजा गया, उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूं।
0: 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रांची रेल मंडल ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें टाटीसिल्वे, मधुआ, लोहरदगा, बड़काकाना, टोरी और लातेहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने भी री नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को राउरकेला और टाटानगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:20 पर टाटानगर पहुंचेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला और टाटानगर के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों और हॉल्टों पर दिया जाएगा। 21 जून को रांची के 21 केंद्रों समेत राज्य के अलग अलग शहरों में री नीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार हुई घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और परीक्षार्थियों को कई लेयर की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के प्रथम चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष जागरूकता एवं परिवार नियोजन गतिविधियां आयोजित की गईं। एएनएम सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने योग्य दंपतियों और समुदाय को परिवार नियोजन के महत्व, अस्थायी स्थायी गर्भ निरोधक साधनों और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम ने अपनी 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान को 701 से 710 बैंड में जगह दी गई है। इस रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों के बीच आईआईटी आईएसएम धनबाद को 21वां स्थान मिला है, जबकि 13 आईआईटी में इसका स्थान 11वां रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में धनबाद में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और इसका समापन सिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक ने कहा कि नियमित योग अभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
3: यह रन फॉर योगा का कार्यक्रम है, जिसमें

0: जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए, यह बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है, सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं बिना दवा का, बिना औषधि का।
1: बोकारो में आदिवासी जमीनों पर कथित कब्जे के मामले को लेकर बोकारो सरना विकास समिति ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने आरोप लगाया कि भू माफिया आदिवासियों के जमीन का स्वरूप बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं।
2: झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में कारों में किस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हो रहा है। चितुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी जमीन को भू माफियाओं ने उसका नेचर चेंज कर पूरा चितुलिया मौजा के जमीन बेच चुके हैं और यहां के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
1: झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में लगभग 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके तहत 5,850 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचारों के अनुसार सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 76,620 पर और निफ्टी 210 अंकों की गिरावट के साथ 23,960 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच होगा। इससे पहले कल धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। री नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 46.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: कोड़ी और अफीम जैसे मादक, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं गिरजा देवी, इनसे सुनते हैं ख्याल अबोघी में कांहरा।

अभी आप गिरजा देवी से खयाल अभो अभोगी में कान्हाड़ा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में चंद खजली।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अगली गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: Jharkhand, 8 people were killed in separate lightning incidents during the last 24 hours across the state. Several people sustained injuries. 3 deaths were reported from Hazaribagh district, while 1 person each died in Ramgarh, Palamu, Lohardaga, Godda and West Singhbhum districts. In FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half, where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Hague port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds center's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया

0: गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान

0: में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश

0: निवेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Cena.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म नाम से ये गाना। आवाज़ पंकज उदास और साथियों की है, शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीत बद किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म क्रांति से, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है, शब्द रचना संतोष आनंद के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया है कि भारत लक्ष्य से पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अनुवांशिक बीमारी के खिलाफ विशेषकर जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
0: विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच मुफ्त उपलब्ध है। झारखंड के करीब 8 से 10% आबादी में सिकल सेल जीन मौजूद है, जिसके लिए जल्द ही राज्य में विशेष मुफ्त जाँच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 322 लाभुकों को उनके नए और सुरक्षित पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। सभी संदेश केवल सत्यापित नंबर 7827980287 से भेजे जाएंगे। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की पुनर्परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। साहिबगंज जिले के राजमहल में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषिका ऐप के माध्यम से केसीसी लोन के आसान तरीकों की जानकारी दी गई। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने किसानों को लोन में पारदर्शिता और रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।
1: जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल युग है, उसमें यदि आप कृषिका ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में।
0: राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हजारीबाग में सर्वाधिक 3 जबकि रामगढ़, पलामू, लोहरदगा, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम में एक एक व्यक्ति की जान गई। इस बीच रांची मौसम केंद्र ने धनबाद और दुमका सहित 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम।

0: हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारे डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।

0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
3: बिन्नी का सपना।
2: एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
3: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
3: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली
3: होता है तो अपने मित्र
2: तो मैंने अपने
0: और को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुड़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सब को जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक

योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा
कि मैं एक ऊंच

ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4। ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम। तेजाब की बारिश करना है मेरा काम। सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ। जीवन में उलझन भर देता हूँ।

0: मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: सीएफसी है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
2: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़ी ही देर में।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम रांची मेलोडीज का पहला नगमा फिल्म जब से फूल खिले से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं फिल्म फागुन से ये गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, शब्दों में पिरोया है कमल जलाल वादी ने, संगीतवत के ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से ये गाना। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा, संगीत पर किया शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं फिल्म सरगम से ये गाना। शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गाना, आवाजें पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों की है। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत मात्र 3 महीनों में 50 लाख टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। सरायकेला में पुलिस की ओर से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। साप्ताहिक बाजार और नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को नशाखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए युवाओं से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और कर्माटांड थाना क्षेत्रों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से 9 मोबाइल और 22 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित ईटागढ़ के दुर्गम जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया है। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं,

0: सुने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्ला। आदाब फौजिया।
0: आदाब हिदायतुल्ला, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और हमारे सामईन भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हिदायतुल्ला, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है और सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, ये आप बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, आप तो एकदम डायरेक्ट आते ही शुरू हो गई
0: बिल्कुल
1: डिप्रेशन,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेट अभी हर कोई नजर आता है। बच्चों को देखा जाए तो उनका जो है डिप्रेशन है।
0: बिल्कुल, मतलब
1: जी
0: कुल मिलाकर के
1: हाँ हाँ
0: सभी लोग
1: जी
0: तनावग्रस्त हैं।
1: हाँ जी जी इससे बचने का सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो वो फिजिकली एक्टिविटीज हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, 21 जून को योगा डे मनाते हैं हम लोग। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में योगा के आलमी दिन की तजवीज पेश की थी। 177 ममालिक की हिमायत के बाद अक्वामे मुत्तहदा ने 21 जून को ये दिन मनाने का ऐलान किया। 21 जून का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये साल का सबसे तवील दिन होता है।
1: बिल्कुल फौजिया, योगा नहायत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए, इसलिए कि जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो फिजिकली तौर पर हम सही नहीं रह पाएंगे। और आप किन चूंकि हम इसी जिस्म से अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करते हैं, तो इसलिए इस जिस्म को चुस्त तंदुरुस्त सेहत याब रखना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ख़ास वक्त का
0: यून करें या
1: तायुन
0: मुकरर
1: करें,
0: जी।
1: मुकर्रर करें। और उस खास वक्त में सबसे अच्छा वक्त जो होता है फौजिया,
0: सुबह
1: वो सुबह के वक्त का होता है और शाम के वक्त का होता है।
0: जी हाँ,
1: तो सामिन, ये दोनों वक्त में आप अपने सेहत के लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें।
0: इंसान की जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए योगा की अहमियत को हम बहुत ज्यादा उजागर करते हैं।
1: जी, और इसके साथ फौजिया, ढलती उम्र के जो लोग हैं, जो 40 क्रॉस कर गए, उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो योग करें, एक्सरसाइज करें और खुद को बिल्कुल फिट रखें।
0: आप खुद ही देखिए हिदायतुल्ला, अभी का जो दौर चल रहा है और पहले के जमाने के दौर के लोगों को, इंसान को देखिए, कितने सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते थे, बाहर निकलते थे घर से और ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा लेते थे और मेहनत मुशक्कत करते थे। हम अभी अपने घर का काम ही देख लें कि सारे काम हम मशीन से करते हैं, खड़े होकर गैस पे खाना पकाते हैं, कपड़ा मशीन से धोते हैं, मिक्सी में मसाला पीसते हैं, और पहले की खवातीन सारे काम खुद से करती थी, चूल्हा जलाकर सील पे मसाला पीस के, इसलिए वो बहुत ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। तो इसीलिए 21 जून को यह दिन मुकर्रर किया गया है कि हम अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा पे इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, देखिए पहले फिजिकली काम ज्यादा था और अब फिजिकली के साथ साथ मेंटली काम भी है। ये दौरे जदीदियत पूरी तरह से मशीनरीज हो गया है, इसलिए आज ज्यादा जरूरी है योग करने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और योग के साथ साथ अगर सामीन बात किया जाए, नशे का लत जो है बढ़ते जा रहा है, तो इस नशे के लत को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए?
0: बिल्कुल हिदायतुल्ला, आपने बहुत सही कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक ऐसी लानत है जो इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत और सेहत सबको तबाह व बर्बाद कर देती है। आज के दौर में नशा मुआशरे को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता मुल्क के तामीर के लिए हिंदुस्तान का नशा मुक्त होना बेहद लाजमी है। नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे कुंबे को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करता है। मुशाहदे से पता चलता है कि जिस्मानी व जहनी खराबी, शराब, चरस, अफीम और दीगर अन्य नशीली चीजों के इस्तेमाल से इंसान अपनी जहनी तवाजन को खो बैठता है। नशा करने वाला शख्स अपने गाढ़े पसीने की कमाई को जाया कर

0: देता है जिसे घर में गुर्बत और कश्मकश पैदा होती है।
1: अरे आपने बहुत सही बात कही कि नशा एक ऐसा नाग है, ये तमाम चीजों को डस लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: हिदायतुल्लाह, हम बताना चाहें कि हमारे आज के नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। अफसोस की बात है कि आज की इस नई नस्ल जहनी तवाजन या गलत सोहबत की वजह से इस दलदल में धंसती जा रही है। इस लानत को खत्म करने के लिए हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी बेदार होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, समाजी तौर पर जब तक हम बेदारी पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक के अपने शहर को, अपने एस्टेट को या पूरे मुल्क को हम नशा मुक्त कर ही नहीं सकते। तो हम तमाम लोग का ये फरीजा है कि वो अपने मोहल्ले के और अपने घरों के सही देखभाल करें और नशे से पूरे मुआशरे को निजात दिलाएं।
0: बिल्कुल, नशा मुक्त भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अज्म होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को इस जहर के खिलाफ बेदार करना होगा। जब हमारा मुल्क नशे की जंजीरों से आजाद होगा तभी हमारा हिंदुस्तान हकीकी मायनों में बुलंदियों को छुएगा। आइए हम सब मिलकर ये अहद लें कि हम नशा मुक्त समाज की तामीर करेंगे। हिदायतुल्ला, बातें बहुत हो गई तो थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और अपने सामईन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और सुनवाते हैं उन्हें ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

0: बनाए ऐसा हिंदुस्तान जहां पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी, काश के ऐसा भी होता
1: बिल्कुल
0: जहां ना हो मजहब की दीवारें और ना कोई दंगा,
1: क्या बात
0: और ना कोई दंगा, हर हाथों को काम मिले हो पढ़ा लिखा के लफंगा, हाँ पढ़ा लिखा के लफंगा।

0: ऊंचा अपना देश रहे और ऊंचा अपना तिरंगा।
1: बहुत खूब
0: हाँ
1: बहुत खूब।
0: ऊंचा अपना तिरंगा हो ऊंचा अपना तिरंगा। इंसानी रिश्तों से महके घर आंगन दालान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी बन,
1: इरशाद
0: आओ अपने देश को मिलकर ऐसा देश बनाए, हाँ ऐसा देश बनाए, रंग बिरंगे फूलों से हम इसकी मांग सजाएं,
1: बहुत
0: हाँ
1: खूब बहुत
0: इसकी
1: खूब।
0: मांग सजाएं, एक है हम और एक रहेंगे दुनिया को बतलाएं, हाँ दुनिया को बतलाएं, मिलके करेंगे देश की रक्षा जैसी भी आफत आए,
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: जैसी भी आफतें आए, अब न बटेंगे हम आपस में, जाए तो जाए।

0: ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान,
1: बिल्कुल
0: ऐसा।
1: कुदरतुल्ला साहब, आपका गज़ल बहुत ही खूबसूरत है और इससे मुतासिर होकर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि तुम्हें सब मजहबों की आज़मतों का ध्यान रखना है,
0: क्या बात है,
1: तुम्हें सब मजहबों की आज़मतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना
0: क्या
1: है,
0: बात है, वाह वाह वाह,
1: अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी।
0: बिल्कुल
1: मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा
0: पूजा भी।
1: भी। यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है,
0: हाय हाय, यही पहचान थी मेरी,
1: यही
0: यही
1: पहचान
0: पहचान
1: रखना है।
0: रखना
1: चलिए
0: है।
1: आप अगला कलाम
0: आओ
1: पेश करें। जी
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें।
1: बिल्कुल,
0: काश काश के
1: काश
0: मेरा हिंदुस्तान ऐसा होता,
1: ऐसा ही होगा,
0: और
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह ऐसा ही
1: ऐसा ही
0: होगा।
1: होगा।
0: ये
1: जी
0: मैं पूर्ण उम्मीद हूं और ये
1: जी
0: शेर पहुंचा रहा हूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें, ना नफरत की बातें, सदा रहे जीवन में अपने खुशियों की सौगातें। हाँ खुशियों की सौगातें, माना के है धर्म अलग और अलग अलग हैं जातें। हाँ अलग अलग हैं जातें, ऐसे में हो प्यार वफा की बरसेंगी
1: क्या
0: बरसातें,
1: बात है, बहुत खूब,
0: बरसेंगी बरसातें। भरा रहे हर रंग के फूलों से अपना गुलदान,
1: ऐसा
0: ऐसा
1: हिंदुस्तान,
0: हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए।

बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद, मुफ्त के राशन से ऐ कुदरत जान छुड़ानी होगी, हाँ जान छुड़ानी होगी, अपनी रोजी रोटी खुद मेहनत से कमानी होगी, मेहनत से कम

0: सीता वो मरियम जोहरा की लाज बचानी होगी, हाँ लाज बचानी होगी, हो लाज बचानी होगी। तब जाकर दुनिया में बनेगी अपनी अलग पहचान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, हाँ ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान।
1: बिल्कुल सामीन, ये इतना अजीम, इतनी खूबसूरत, हसीनो जमील मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। महासागर की तरह गहराई और हिमालय की तरह बुलंदी इसमें देखी जा सकती है। इसे अजीम बनाने में किसी एक कौम या एक शख्स का हाथ नहीं है। ये गौतम से लेकर गांधी तक, जिसमें चिश्ती भी आते हैं, नानक भी आते हैं, टैगोर भी आते हैं, अल्लामा इकबाल भी आते हैं, मीरो गालिब भी आते हैं, तुलसी और मीरा भी आती हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। एक दो दिन में ये मुल्क नहीं बना है। अगर किसी के कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो हिंदुस्तान की तहजीबी सरबुलंदी पर दाग लगाना।
0: गजल के चंद अशार। वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा,
1: खूबसूरत।
0: वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा,
1: जरूर जरूर,
0: जर्द पत्तों तो पे बहारों का असर आएगा, और जाने कब होगा अंधेरा मेरे घर से रुखसत, जाने कब होगा अंधेरा मेरे घर से रुखसत, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा। और ये भी शेर सुन ले कि जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना

0: कदर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मेरा हक है वो एक रोज मगर
1: बहुत खूब
0: आएगा,
1: बहुत खूब।
0: जो मेरा हक है वो एक रोज मगर आएगा, फिर मेरी आंखों में आ जाएगी पहले सी चमक, फिर मेरी आंखों में आ जाएगी पहले

0: कोई शामो सहर आएगा, फिर लिए फूल कोई शामो सहर आएगा। अब तो आदत सी हुई जाती है तन्हाई की,
1: क्या बात है।
0: अब तो आदत सी हुई जाती है तन्हाई की, अब तो आदत सी हुई जाती है तन्हाई की, फिर भी लगता है कोई यार नजर आएगा, फिर भी लगता है कोई यार नजर आएगा।
1: बहुत खूब,
0: और
1: बहुत
0: जब
1: खूब।
0: हवाएं तेरे आने की खबर लाएंगी, नौजवानों के लिए शेर है भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब हवाएं तेरे आने की खबर लाएंगी, जब हवाएं

0: उतर जाएगा।
1: बिल्कुल, हम ये कहने पर मजबूर हैं सामईन कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर।
0: हाँ
1: आपकी जो गजल है उसी से मिलता जुलता हम ये शेर कहेंगे कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर, हाँ इतनी गुजारिश है कि मेरे दिल में रहा कर।
0: क्या बात है, वाह वाह।
1: जी चलिए आप अपना
0: गम
1: कलाम
0: के
1: पेश करें।
0: मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा,
1: ओहो
0: रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा। और ये भी खासकर तवज्जो का तालिब है कि मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, मेरे कमरे में उदासी का बसेरा है बहुत, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा। और मक्ते का शेर कि
1: इरशाद।
0: एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत,
1: क्या बात है भाई,
0: एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, क्या वो एक रोज मुझे लेने इधर आएगा, क्या
1: ओ
0: वो
1: बहुत
0: एक
1: खूब,
0: रोज मुझे लेने इधर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा। बहुत शुक्रिया।
2: तो सामईन अभी आप कलामी शायर के तहत समाअत फरमा रहे थे जनाब कुदरतुल्ला कुद्दस से उनके चंद खूबसूरत गजल। और सामईन उनके गजल से मुतासिर होकर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो मंजर बदलना चाहते हैं।
1: बिल्कुल फौजिया, और ये स्टूडियो की घड़ी अब हमें मजीद बातें करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए सामीन आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला,
2: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दे इजाजत, आदाब।
1: आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। सूत्रधार थी फौजिया तजी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चले, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे सांझ सरगम 4:35 पे, प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। 5:02 पे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है स्त्री सुरक्षा और युवाओं की भूमिका विषय पर, इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में आप सुन सकेंगे। रोचक तथ्य और समसामयिकी पर भी चर्चा होगी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम शाम के 5:30 पे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत की बेटियों को सशक्त बनाने का एक दशक, इस विषय पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। खेतीबारी कार्यक्रम 6:02 पे। आज इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है लतरदार फसलों के प्रमुख रोग एवं उसका प्रबंधन विषय पर। विशेषज्ञ डॉक्टर लाहम दोरजी, इनसे बातचीत करेंगे मनोज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम 6:32 पे आप सुन सकेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य, साथ में आप सुनेंगे नागपुरी वार्ता, विषय नागपुरी शिष्ट साहित्य का विकास विषय पर। भेंट वार्ता का डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी, भेंट वार्ता का डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे। जिले में आजकल 7:11 पे। 7:15 पे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम, फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8 बजे, विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण रात्रि 8:10 पे। सुनहरी यादें कार्यक्रम, फिल्म संगीत से भरा एक कार्यक्रम रात्रि 10 बजे, और शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पे आप सुनेंगे सितार प्रयाग चांदनी कल्याण में आलाप और गत। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

नौ दो ग्यारह का गीत अभी आप सुनेंगे, किशोर कुमार की आवाज़ में, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

सुन चिराग का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब सुने फिल्म तीन देवियां का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म गाइड का यह गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, रचना शैलेंद्र की, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: भाई और बहनों, मेरी बहन मेरे कहने के ऊपर मेरे सिर पर बोझ रखकर एहसान।

0: और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म गुमराह का गीत। श्रोता हूँ आपको फिल्म सावन की घटा का गीत सुना रहे हैं। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, रचना SH बिहारी की, संगीत ओपिन नैयर का। तो आइए सुने फिल्म सावन की घटा का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।
1: मेरे जान तुम पे सदका।

0: इस आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 30 जून से SIR कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत PLO घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य चुनाव अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में आज रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की और उन्हें युवाओं, किसानों तथा वंचित वर्गों के संघर्ष का प्रतीक बताया। लिंक रेक के विलम्ब से चलने के कारण आज हटिया से खुलने वाली हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 के स्थान पर आज रात 7:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। देवघर के सदर अस्पताल में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता और उपाधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10:30 पे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सितार विराग चांदनी कल्याण में आलाप और तीन ताल निबद्ध रचना प्रस्तुत की जाएगी।

रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनहरी यादें आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8 बजे, विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण रात्रि 8:10 पे। प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे आप सुन सकेंगे।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओ, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. Now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about... And then, of course, and the final aim... the crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446.
0: मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क। व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत। वी गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज फ्रॉम ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स अप टू ₹5 lakhs। सो पीपल हु हैव गॉट डेट्स एंड ऑल दैट विल बी वेव्ड ऑफ। देन सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट स्कीम विच इज CPPS, एंड देन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू उमंग ऐप, and face authentication technology FAT through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो, इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो, और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
1: विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट let the, this prime minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no, rozgar ya karobar saath hai bharat sarkar ji
0: ले, तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन, रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके, और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
1: Split into two distinctive parts. Employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai, wo bhi hai.
1: This component focuses directly on the young individual, and the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPF. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है, बिल्कुल फायदा है, और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का, नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी, और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: Yes. See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organises across India through the National Career Service portal That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service NCS is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए, को टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ, प्रधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: Fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, the 31st of July 2027. Manufacturing sectors, the heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are extra. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.9. And then 84 lakh pensioners who are being
0: से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प, खुश एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच, तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता
1: बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: And now all are connected. सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू 728 डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ, राइट नाउ. एंड ऑलरेडी 15 लाख पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द एम्प्लॉयमेंट लेटर, द जॉब लेटर्स, एंड दैट्स टोटल इंसेंटिव व्हिच इज गोइंग टू गो टू देम इज 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू, तो जरूर बताना चाहेंगे योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारी रेट हुआ है। एक लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है ना?
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज नाउ। द स्कीम एम्स टू मेक इट इजियर फॉर यंग पीपल टू एंटर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल एनकरेजिंग बिजनेसेस टू हायर मोर वर्कर्स एंड एक्सपैंड इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, एंड देन सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, एंड देन something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the work for the development of the country.
0: सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत, और 14.5 पहुंच, और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा। ये बहुत जरूरी
1: is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी।
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इन टू द अकाउंट, एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स। Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. They have gone digital and we have gone digital. So

0: We are, in fact, we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: It's full. Not a single seat is empty. People are, they are all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it will come to the phone that they have got their letter.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो. नहीं, आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है. और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire who provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री कुछ पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं आजे. और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग दिस जॉब टू मी. So, and I am telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vikyan Bhavan. And they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen. And then after that, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah. People across the country. And then of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech, because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants willing rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के के नियोक्ताएं चार वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता दो वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेज आर देयर. द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड यू नो दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. देयर्स अ screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board, and on that the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given. All the
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवा अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know, and you won't believe if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan. You'll see that it, you come up in your life. End to anything. So you know, yeah, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, fingers to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा। तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना आती है, जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में। और बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं। और आज कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से।
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable. For not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know. With them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your. He listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems, and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है। फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको
0: 3.5 crore people are going to get jobs in India. Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today they'll be it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough.
1: देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है। एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
0: The person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still. Today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद द अदर डिग्निटरीज, ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन, ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बेनिफिशियरी, ना द स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो जाए देवियों और सज्जनों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा कदानला जी का
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल
3: माय भारत वॉलंटियर्स आप सभी का
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk. Flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान जोरदार तालियां
1: जी का एक युवा लाभार्थी ने
2: यह सम्मान का माध्यम है यह आत्मविश्वास का मजबूत नींवों में से एक है यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दें
0: And now the welcome remarks
2: जोरदार तालियां हो जाएं।
0: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य के श्रम मंत्रीगण आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात कर इसके खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान, एक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1,00,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15,00,000 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगी में और सच में बयां करती है।
5: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
6: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
5: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रूपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
7: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
8: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।

0: button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन शंकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।

साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता था ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए

ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं।
आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत
दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल्ड टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं,
आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम
ये मेरी भी प्रेरणा है।

0: और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार कर बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।
0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
5: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
6: पुनीत, 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी, और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं। आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं?
7: प्राची, देखिए भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था, और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी थोड़ी सीमित होती थी। वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और जो बाकी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वहां पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियां रही हैं, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहां पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहां पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ये नंबर्स बढ़े हैं, काफी ज्यादा बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इंकम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो मुझे लगता है ये काफी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की, और भारत को जरूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आई थिंक इट इज रियली बैडली नीडेड।
5: Puneet, you mentioned about the services sector earlier on. Prachi mentioned about the time period from 2004 to 2014, 10 years, but now you talk about the other things. Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which were kind of looking for something, you know, in their career to do something. You talk about the lawyers, you talk about the doctors, engineers, software engineers, and all. But what about the other part of the population, the youth, who may not be that fortunate, you know, to have that degree of a software engineer or a lawyer or a doctor? So how significant do you see this Prime Minister Bharat Rozgar Yojana actually contributing to that?
7: So Nishit, this is a very interesting question, and of course a question which really confronted us for many decades. So we had opportunities or employment opportunities for youth in cities. So if you move to a metro, so there was a lot of large scale migration, if you'd see, of workforce from villages in India to the cities, and therefore we had metropolitan cities and tier 2 cities coming up. But it really created a lot of human cost also for migrant laborers, because first of all they did not get the jobs that they were skilled to do, which they could have done better probably in their villages or in a smaller towns, and therefore I think there was this great gap in India's growth story, or great gap in India's.
8: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी दुनिया।
9: भाई बहन मत जोहार, और दीदी तो के भी बहुत बहुत जोहार।
10: हाँ अरविंद भाई, तो खो जोहार है, और कैसन हालचाल है?
9: एकदम बढ़िया दीदी, अपन बटे बताओ कैसन हालचाल।
10: हाँ हालचाल सब तो बहुत बढ़िया है, बहुत दिन बाद भेटा ही और एकदम मौसम भी देखा थी कि इतना सुहावना हो जाए।
9: हाँ, हाँ। उस दिन बदलत है मौसम, बिहान बेरा एकदम जमको हुआ पानी अलग, और उकर बाद रोद सेकलक बहुत जोर से
10: बहुत जोर से। हाँ
9: तो मौसम बहुत तेजी से बदलत है दी, और एखन हमरे मन के देखब नहीं तो हमरे मन के बहुत सारा काम एखन कर समय में है, खेती बाड़ी से जुड़ल है और छुआ मन कर स्कूल मन भी खुल जाए तो तरह तरह अगर काम धंधा है तो बदलत मौसम में अपन जीव सवांग के बेस रखना जरूरी है।
10: एकदम एकदम एखन तो स्थिति एसन हो जाए है कि गर्म तवा में पानी के छिड़े के देली वाला शरीर तो एकदम गर्म रहे
9: सुपट सुपट कर ले और छेंग छेंग करे नियर जैसे तवा में करे ला नहीं उसने करत है
10: उसने करत है एखन कर मौसम
9: एकदम भाई तो अपन जीव सवांग के बेस रखना जरूरी है संगे संगे काहे नहीं कि हमरे कर जितना छुआ मन है नहीं मन कर भी हाल चाल के बेस रखना बहुत जरूरी है। तो दीदी देख हमरे कर जे सुनबु या भाई बहन मन है मन भी आज बहुत जोर से आसरा करत हो खास करके आज कर दिन में हमरे युवा सभा करी ला तो सब नौजवान मन इंतजार करते हैं कि आज कार्यक्रम में का का जुगाड़ है।
10: तो नागपुरी लोकगीत हमरे सुनती तो बढ़िया रहता
9: एकदम बढ़िया
10: हाँ बसीर अंसारी और संगी मनकर गावल गीत है।

0: तो एक हमारे बहुत बढ़िया गीत सुनत रही, नागपुरी लोक गीत रहे, बसीर अंसारी और संगी बनकर गावल रहे। अब हमरे को जानकारी कर लेती नागपुरी शिष्ट साहित्य कर विकास कर बारे में बताबे डॉक्टर उमेश नंद तिवारी।
1: नागपुरी भाषा बहुत सुंदर, मधुर, सरल, सहज और अपने इति जगाक वाला भाषा है कि एकर बोलिए में गीत फुटेला। एकर विशेषता मन के चलते के बांसुरी कर भाषा गीतों की रानी जिसन उपमा देवल जाए। जैसे वन के ओरा का सुगंध हवा और बतास में पसेर के दिग दिगांत के सुभाषित करेला, उसने नागपुरी गीत कविता अपन सुगंध और मधुरई से युग युगांतर से सौसे झारखंडी नागपुरिया जनमानस कर मन प्राण के सुभाषित करते आवत है। संसार का हर भाषा साहित्य में पद्य रचना पहले शुरू हुए ला, ओहे लखे नागपुरियों में पद साहित्य पहले आलक। पद कर माने कूदे माने गति हुए ला, इसन विद्वान मनक मानक है। नागपुरी साहित्य का सृजन गीत से हो है, इकर में लोकगीत का समृद्ध परंपरा है। तभी तो शुरू से लेके अखन तक नागपुरी से मन लोकगीत के ठूरा करे और इकर भाव भाषा शैली ऊपर शोध में लागल है। नागपुरी का लोकगीत साहित्य कर अनमोल खजाना है कि ईसन ईसन लोकगीत भेटायला कि विद्वान शोधकर्ता अचरज में पड़ जाए। नागपुरी में शिष्ट पद साहित्य कर उन्नत और अकूत भंडार है। डॉक्टर बीपी केसरी अथक प्रयास करके 885 कवि मनक सूची तैयार कर लें। वो मन कर रचना खोज लें और नागपुरी कवि काव्य किताब पर रचना कर लें। नागपुरी गीत लाखों की संख्या में आज भी जनमानस में जीवित है। इन गीतों में राग लय रस अलंकार के साथ विषय की मोहक विविधता और भावों की आंतरिक उदारता भी है। ये कही के डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी पद साहित्य कर विषय व्यापकता और कर सुंदरय के बताए हैं। नागपुरी पद साहित्य कर और कहिया से शुरू होलक ठीक ठीक कह मुश्किल है। लोक साहित्य कर और कहते क्यों बता के नहीं पार मैं, लेकिन कर शिष्ट साहित्य कर शुरुआत कर प्रमाण 1626 ईस्वी से भेटायला। विद्वान अपन अपन ढंग से शिष्ट पद साहित्य कर काल विभाजन कह रहे, लेकिन मोटा मोटी इकर पहल चरण 1626 ईस्वी से 1850 ईस्वी, दूसर चरण 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, तीसर चरण 1900 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक और चौथा चरण 1960 ईस्वी से एखन तक मान चकीला। पहल चरण में नागपुरी शिष्ट साहित्य कर और रघुनाथ निरपति से शुरू होवेला, जे नागवंश कर 50वां राजा रहे। इनका राजकाल 1626 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक रहे। इनकर पहल रचना के विद्वान मन नागपुरी शिष्ट साहित्य कर और माने। पहल चरण में दलेल सिंह, पद्मन दास, रुद्र सिंह मनक नाम आवेला। यह बेरा कर कवि में गोरंगिया, विनंदिया, उपेंद्र नाथ सिंह देव मनक गीत अपन काव्य सौष्ठव के संगे आगू में आला। इ मन के गीत में बंगला कर प्रभाव रहे। उकर कारण रहे कि मन बंगला भाषी क्षेत्र से सटल ठाँव कर रवैया रहे। नागपुरी पद साहित्य का सुपटवा रूप 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक कर महान कवि हनुमान सिंह, बरजूराम, जय गोविंद मिश्र, सोबरन मनक रचना में मिले। हनुमान सिंह के बारे में कहल जाएला कि लगभग 3 लाख गीत कर रचना कर। जब हापा मोनी गमरिया कर रहक वाला बरजूराम पाठक से ही गीत द्वंद्व में हार गए तो अपन 1 लाख गीत के गंगा में प्रवाहित कर दिले, 1 लाख गीत के अग्नि में प्रवाहित कर दिले, फिर घूर के आय के 1 लाख गीत लिखने। इनकर लिखल मुद रचना है दशरथ बिया, सीता स्वयंवर, पूरी यात्रा और अनठेकान छूट फूट गीत मन। इनकर भाव भाषा और शैली अद्भुत है। ये राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, हर भक्ति कर सिरमौर कवि रहे। इसने बरजूराम जे हापा मुनि गमरिया कर रहक वाला रहे, इनकर बारे में कहल जाएला कि 1800 गीत का रचना की रहे। इनकरो बेसी गीत नहीं भिटायला, मुदा जे रचना मन है साहित्य कर उच्च कोटि का रचना में राखक वाला है। जय गोविंद मिश्र टाटी चिल्वे रांची कर रहक वाला मुद कवि रहे। इनकर रचना मन में कृष्ण लीला, उदक केली, होली, लंका कांड और मन अमर अमर रचना है। महंत खांसी मंझला मांडर का निवासी रहे, जो नागपुरी में निर्गुण साहित्य कर सिरमौर कवि मानल जाए। कबीर से प्रभावित उनका निर्गुण काव्य नागपुरी साहित्य कर ईसन संपत है, जो नागपुरी साहित्य के दूसर भाषा मानक साहित्य कर पाइंट में लाइन के शान से खड़ा कर दिलक। इसने ही परिया के कवि में कंचन जकर पूरा नाम चुनी राम दुबे रहे, वो कोराबे कर रहैया रहे। इनका रचना मन में सुदामा चरित्र, नल चरित्र, कृष्ण भक्ति, महाभारत, लंका कांड, ताना आंदोलन, शंकर वंदना और उषा हरनमन जैसन अजर अमर काव्य नागपुरी के शोभा बनलक। नागपुरी जन कवि के रूप में प्रसिद्ध घासी राम नागपुरी साहित्य ले वरदान साबित होने। 1850 ईस्वी के बाद कर पीढ़ी में एक कवि कर रचना जनमानस कर कंठहार बन गलक। इनकर जन्म करकट मांडर में एगो गरीब परिवार में हो रहे। से बेराई मिडिल पास करके चोरिया मांडर कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूपी स्कूल में मास्टरी करे लगल। पासे पोस्ट मास्टरों कर काम करने मुदा मन तो रमर रहलक नागपुरी गीत कर मधुरई में नौकरी छोड़ के सरस्वती कर उपासक बन गए। इनका प्रसिद्ध रचना मन में नागपुरी फाग शतक दुर्गा सप्तशती जनानी झूमर जैसन किताब कर प्रकाशनो हो। इनके नागपुरी के विद्यापति कहल जाए। भाव और भाषा दुयु के नजर से इनका रचना गीत दिल के छुएक वाला है। नागपुरी के ठवन इनकर गीत में अजगुत भेटाएला। इ बेरा नागपुरी के पद साहित्य कर सबसे बेस्ट समय रहे। सहजाना गुमला निवासी दृकपाल राम देवघरिया नागपुरी काव्य साहित्य कर गहना है के यासु कवि रहे। इनकर निकल नल दमयंती चरित्र छपायो रहे। नागपुरी पद साहित्य कर मध्य और आधुनिक काल कर संधि बेरा में धनी राम बख्शी नागपुरी साहित्य के अनमोल रतन रहे। 1896 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक अपन खून पसीना से नागपुरी भाषा साहित्य कर सेवा करवैया धनी राम बख्शी चाईबासा में हितैषी कार्यालय कर स्थापना करके नागपुरी कर सेवा करते रहें। इनका रचना मन में देसी झूमर देसी नागपुरिया झूमर फगुआ गीत चाय भाग नागपुरिया संगीत सुमन नागपुरिया टमकच गीत मन है। इस बेरा के प्रसिद्ध कवि में जगनिवास नारायण तिवारी बोलिया नागपुरी पद साहित्य के और उच्च ठाँ देवाले। ये नागपुरी काव्य कर स्वर्ण काल रहे। एक ले एक बेजोड़ कवि मन अपन प्रतिभा देखाले। बलदेव साहू अनूप राय नुंद्रू राम मनमथ नाथ शर्मा मृत्युंजय नाथ शर्मा अब्बास अली शेख अली जान डोमन शेख पांडे दुर्गानाथ राय बड़ाई किशोरी प्रसाद राधा कृष्ण शानी उपेंद्र पाल नहन सैकड़ों कवि मन प्राण से नागपुरी के सेवा में जुड़ल रहन। एखन शानी उपेंद्र पाल नहन और पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा मन प्राण से नागपुरी के सेवा में लागले हैं। इस समय मध्य और आधुनिक काल के संधि काल रहे से ले पद साहित्य भक्ति धारा से कटिक फर्के होवे लागलक। त्यों भक्ति कर जोर रहे रामायणी सीतायणी सदगुरु चरित्र लके भक्ति का मनक संगे संगे आधुनिकता कर छहक आवे लागलक। चुनू लाल अंबिका प्रसाद नाथ शाहदेव शेख अली जान पांडे दुर्गानाथ राय गोविंद साहू जैसन कवि मन कर रचना में इस सहजे दिशे लागलक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पूनम दी, देखो एखन हमरे मन कर जे मौसम बदलत है नी, उकर में हमरे के जिसे अपन रख रखाव के बगरा हमरे के ध्यान देवेक है। संगे संगे अखन खेती बारी कर दीन है, सब किसान मन खेती बारी में लागल
4: है।
3: तो खेती बारी बटे भी ध्यान देना है, और जे भी अपन खेती कर तैयारी कर थी बढ़िया से करू भाई।
4: का लगिन के साल में एक ही बार मौसम आवेला, और उकरे में हमरे के मेहनत करे के, और फिर अपन स्वास्थ्य के भी बढ़िया रखे
3: एकदम, और खेती बारी हमरे मन के बढ़िया से करे के। सुपर टोरी कहली कि भाई साल भर करी फसल है, धान कर एखन सीजन चलत है, और बरसात अब शुरू हुई है चुई के, आज बढ़िया पानी बरखा
4: लग,
3: और जो मानसून है से हमरे कर झारखंड में अब प्रवेश कर चुई के। तो अब खेती कर एकदम धुआंधार तैयारी हमरे मन के करे के, और जितना भी नौजवान भाई बहिन मन है उमन के भी कहब कि देखिए खेती बारी में हमरे मन के अपन जोर से जरूर हमरे मन के भागीदारी अपन निभाई चाहिए, अपन तबे हमरे मन का देश भी आगे बढ़े
4: एकदम एकदम। और एखन गाछ भी लगाए देवे के है, एखन है लगाए दे एखन एखन अगर लगाए दे हमरे तो बढ़िया पूरा बढ़ भी जाई
3: एकदम सपोर्ट करती। और संगे संगे देखो खेती बारी भी रही, और पेड़ पौधा अगर रही तो हमरे मन कर पर्यावरण भी ठीक ठाक रही, और हवा धुका हमरे मन के बेस मिली तो हमरे कर जीव स्वांग भी बेस रही।
4: अब और फलदार गाछ हूँ लगा दिले और बढ़िया है।
3: हाँ, एकदम एकदम की, और फिर देखकर देख ली कि बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म कर किसान मन फल पौधा मन लगा
4: एकदम एकदम। हाँ,
3: तो भाई जरूर करे के चाहिए, पर्यावरण के बचाए के है तो हमरे मन के पौधा लगाना जरूरी
4: है।
3: तो पूनम दीदी, अब हमरे मन के विदा लेवे कर बेरा भी हो जाए, अब चले के चाहिए, सबको से विदा लेवे के चाहिए।
4: तो एक कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर,
3: अब चले
4: चले के चाहिए। हाँ,
3: लगे तब
4: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी दुनिया कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बोकारो में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
2: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शन हैं, पहले चरण में प्रीपेड मीटर, ये करने का जो विचार है इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज, जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
0: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और DVC के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
3: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहां के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती है तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने JSLPS की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
4: मैं JSLPS की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपके आत्मनिर्भर

0: भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन और जनसंपर्क पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाओं का तथ्यों के साथ तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि SIR के सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
1: ट्रेनिंग प्रोग्राम कमीशन के हिसाब से 20 तारीख को DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ERO AERO करोगे, फिर उसके बाद अपने फील्ड ऑर्डर, उसके बाद वो ट्रेनिंग अपने प्रक्रिया में शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग में एनुमरेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है, एनुमरेशन पीरियड का है, उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग वो दोनों होगा, प्रक्रिया का भी, इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा। फिर फॉर्म भरवाने के लिए, एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए, कैसा, वो डिटेल ट्रेनिंग होगा।
0: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज SIR कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि बैठक में SIR की बारीकियों पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया गया। CIPET रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के कुछ इंटरनेशनल लिंक मिले हैं।
2: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे और फिर धीरे धीरे मतदान करते हुए उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ATS के द्वारा किया जाएगा।
0: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के इनामी सब जोनल कमांडर एवं एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खरवार पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि JJMP के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। जो शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष पूरे जिले में 15,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल का बचाव जरूरी है।
3: लोगों से मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, दूसरा उसको रीयूज करें, तीसरा कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते तो रिसाइकिल करें, ये 3 प्रिंसिपल अडॉप्ट करें।
1: इस मौके पर लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
4: विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फिर प्लास्टिक का यूज़ कम करें, सोलर पावर का ज़्यादा यूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो पनसोखा या जो भी घरों के बगल में लगाते हैं जिससे कि वाटर लेवल मेंटेन रहे, ये 4 चीज़ मेंटेन करते हैं तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो है गोल जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं।
1: लातेहार में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से सशक्त एवं अनुसंधान कार्यों में दक्ष बनाना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पलामू प्रक्षेत्र के DIG कौशल किशोर ने कहा कि
5: देखिए, लातेहार थाना अंतर्गत दुर्वा क्षेत्र में आज एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक लातेहार और समस्त स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, शहरों में, सभी स्थानों पर जाएं और जाकर लोगों के साथ सीधे संवाद करें और उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, उनको समझने का प्रयास करें।

0: लातेहार जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशा पान से दूर रखना है। यह कार्यक्रम 15 जून से 25 जून तक चलाया जाएगा। जागरूकता रथ रवाना करने के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
1: 15 से लेकर 25 तारीख तक गाँव में विशेष कर जाकर जो नशा लिप्त लोग हैं उन लोगों को हम लोग पशु करेंगे, उन लोगों को हम लोग समझाएंगे चार प्रसार के माध्यम से।
0: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
2: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज का ये कार्यक्रम है हो भाषा में।

0: रेडियोरे हो कुरुडुरु आदिवासी आखड़ा आयुमतन सनाम हागा ओंडो मिसिको अलिंग ललिता देवगम ओंडो सुनाना बोय पाए तिकिंग पाएते इकिर जीवनते इबिल सिबिल जोआर
1: जोआर गे हागा को डोंगल पादो इस जोर चास वास पट्टी को बंतना बाबा पड़ा रंबा मूंगी बाबा हेर को बंतन गया हाकु चास्तान हागा को हाकु को बंदा करे को आ को तन्ना को उनको जीराव भूमिता कुआ गमाति पिल्लंग सनाम पुदगल चिमिन चीर अगे निलो पता को गीत गदेतन लिपि लिपि बाना ना बरसिंग उलियोंडो कुदे दो इस जोर जमो तना सबिन पा सुकु सुमुकिते बु तयोचा
0: हागा को तिसिंग टुटका जगर लो दुरंग कोलिंग दिपिल दार तड़ा मांग ते तिसिंग टुटका जगर घरेलू हिंसा के कारण एवं समाधान आयरते बु चिरगल मस्कर लिया बु ची घरेलू हिंसा दो चीना तोरंग घरेलू हिंसा माने एनकन एनकन पार्टी ओकुना ते जान एरा ओंडो 18 सालों ते हुड़िंग कुआ होन को ची कुई होन को स्वास्थ्य सुरक्षा आर्थिक संकट ओंडो एनकन दुकु तकलीफ को नामिया को का साथिंग दहिए को ओंडो एरा ओंडो होन दुकु लो तेगे गियो नमे त्या घरु हिंसा ये हुजुए नेना सुम दो हाम बुड़ीते तपम दो का उवारे मिनाई जाय हो जोदी तपम लोते दुकु नमिया सांगी हो को रेगुए गियो रेगुए नेना साबिन गे घरेलू हिंसा मिना नेना तो चीना मेंते तोरंग होबंतना इदु नेन कजिम में
1: तपम दो बुगिन पाटे तो कागे तना निना एटकन मानसिकता उदुबिया इरा को कुआ को समनंग होमोते कमजोर गया को होमो लोते उड़ो विचर्ची भावनात्मक रूप तरो को कमजोर गया तपम रिया होनोबा चीना मेंते तोरंग होबना अन्य उड़ो ते दो ना वर्सिंग सिपेट को इस जोर को नू नू है नू ते चना एटकन बुगिने का को उड़ो दे ये इना मेंते को तपम मिसे मिसे दो हाम बुड़ी पुईसा टका को ककिन हो बार रहे हो किन तपम उंडो होन को तम को
0: सारी गे इसु मुश्किल गे अपना सनंग ते पार्टी को तो का हो बार रहे दो तपम को नीना को तो का बुगिने नीना चिलके वो हरदू दे ये आपस रे हाम बुड़ी जो दि काजी को किन जगर मस कर लिया एन रे दो रुपू तपम को का हो बाना साबिन को परिस्थिति मिट गे तो का तैने परिस्थिति अपन सनंग लेका बैस एनंगा एन रे तो रंग नेलकन हिंसा को का हो बावा
1: सरी
0: हागा को निंता मिंडो दुरंग बु आयुम लिया दुरंग तन किन दो मिलानी बोदरा ओंडो अकिने जुड़ी

अब ये आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम था हो भाषा में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। जन स्वास्थ्य से जुड़े आज के इस अंक में हम खास चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी के बारे में। इससे जुड़ी जानकारियां आपसे साझा करने में हमारा साथ देंगी हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: चंपा मुनि दीदी, आपको भी जोहार। अपने श्रोता भाई बहन को हम बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रिया जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया है। वही इस यूनिट को जरूरी दिशा निर्देश और कार्य अनुमोदन देने के लिए एक स्वतंत्र संचालन समिति का भी गठन किया गया है।
0: सही बात है पूर्णिमा बहन। श्रोताओं को बता दें कि सामाजिक अंकेक्षण को पूरी निष्ठा से लागू करने और इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी उपायुक्त के संरक्षण में सिविल सर्जन के कंधों पर होती है। सिविल सर्जन द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी अपनी तरफ से सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा प्रशिक्षण एवं नामित जिला, प्रखंड एवं ग्राम के स्रोत व्यक्ति को सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में जरूरी सहयोग प्रदान करते हैं।
1: चंपा मुनि दीदी, समुदाय आधारित निगरानी के तहत सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में श्रोताओं की जानकारी और भी दुरुस्त करने के लिए हमें सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय मिंज जी से मिलकर उनसे और भी जरूरी जानकारी लेना चाहिए, ताकि श्रोता लोग भी जान सके।
0: हाँ बहन, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है। चलिए चलते हैं, अकय मिंज जी से मिलते हैं।

0: जोहार अकय दीदी, आज बहुत दिन के बाद आप फुर्सत में मिले हैं। एक जरूरी काम है आपसे।
1: आओ पूर्णिमा, आखिर कौन सा जरूरी काम है मुझसे?
0: अकय दीदी, आज हम सहिया रेडियो के श्रोताओं को स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी के बारे में बता रहे हैं। इस विषय में आपसे कुछ जरूरी जानकारी चाहिए ताकि श्रोता भी इस बारे में विस्तार से जान सके।
1: बहुत अच्छी बात है पूर्णिमा, तुम्हें CBM अर्थात समुदाय आधारित निगरानी के बारे में जो भी जानना है बेशक पूछ सकती हो।
0: सबसे पहले ये बताएं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी का क्या उद्देश्य है?
1: देखो पूर्णिमा, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो संचालित योजनाएं हैं आखिर किनके लिए है? हमारे राज्य के

0: हरेक गांव के अंतिम व्यक्ति तक उस हर महिला के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, मतलब कि हमारे समुदाय के लोगों के लिए है। और अगर इसका लाभ समुदाय में नहीं पहुंच रहा है तो फिर ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए और गांव तक लोगों को उन सुविधाओं की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए सामुदायिक आधारित निगरानी की आवश्यकता है।
1: समुदाय आधारित निगरानी के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें क्या क्या किया जाता है?
0: देखो, पहले तो ये समझना है समुदाय आधारित निगरानी मतलब समुदाय के द्वारा, समुदाय के लिए आधारित मतलब समुदाय के लोगों के द्वारा ही, और निगरानी मतलब छानबीन, लेखा जोखा लेना और एक समझ बनाना। तो सबसे पहले इसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जब हम किसी चीज के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे विभिन्न योजना या विभिन्न कार्यक्रम जो स्वास्थ्य के मुद्दों को और बेहतर करते हैं जीवन में, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके लिए बीटीटी, सहिया साथी गांवों में ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों, महिला मंडलों या ग्राम सभा के साथ में मिलके सरकार की योजनाओं को, स्वास्थ्य की योजनाओं को बताते हैं। पहला उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, उसके बाद उन्हीं में से गांव के लोगों से ही चयन किया जाता है कि कौन कौन लोग अगुवाई लेंगे, क्योंकि पूरे गांव के लोग तो एक साथ नहीं इसको करते हैं, परंतु कुछ लोग उसमें लीडर्स बनते हैं, अगुवाई लेते हैं। तो उन लोगों को चयनित किया जाता है जिसमें मुख्यतः ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य होते हैं, हमारे जो पंचायती राज के सदस्य वार्ड मेंबर लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं, और उनको फिर चिन्हित करके उनके द्वारा फिर हर एक प्रक्रिया को पूरी की जाती है।
1: सामाजिक अंकेक्षण में किन विषयों पर फोकस किया जाता है और ये किनके द्वारा संपन्न होता है?
0: सामाजिक अंकेक्षण जो समुदाय आधारित है तो उसमें मुख्यतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विषय फोकस होते हैं, पेयजल की सुविधा के बारे में बात होती है क्योंकि पेयजल से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, और पेयजल का सही रखरखाव को भी फोकस किया जाता है। उसके साथ साथ ये फोकस किया जाता है कि जो स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे हैं उसमें नागरिकों का भी कुछ हक है, जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत जब कोई गर्भवती महिला प्रसव के लिए अस्पताल में जाती है, संस्थागत प्रसव होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको 1400 रुपया और शहरी क्षेत्र से अगर है तो उसे 1000 रुपया मिलता है। तो क्या ये लाभुक का जो हक है, उस महिला का हक है, वो प्रोत्साहन राशि उसे मिली या नहीं मिली, इस पर भी चर्चा होती है। इस पर फोकस ये भी होता है कि जब हम किसी स्वास्थ्य के कार्यक्रम को गांव के स्तर पे चलाते हैं तो उसमें कितने लोगों की भागीदारी हुई है, इस पर भी फोकस किया जाता है। और इसको संपन्न करने के लिए ग्राम सभा, ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य, पंचायती राज के सदस्य, ये साथ में मिलकर के, पूरे गांव के साथ में मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को करते हैं। सबसे पहले गांव में आकलन होता है विभिन्न कार्यक्रमों का, जिसमें लोग 1 से 10 नंबर देते हैं, जैसे बहुत खराब है तो उसको 1 से लेकर के 4 नंबर तक दिए, थोड़ा ठीक है तो 4 से 7 नंबर दिए, और 7 से अगर अच्छा है तो उसको 7 से 10 नंबर देते हैं। वैसे ही करते हैं कि जो 1 से 4 नंबर है उसको हम लाल रंग से रंग देते हैं, और 5 से जो 7 नंबर है वो पीले रंग में रंगा जाता है, और जो 8 से 10 है वो हरे रंग में। तो जब हरेक कार्यक्रमों को उसी तरह से सूचीबद्ध करके ग्राम सभा में जब दिखाया जाता है तो लोग तुरंत जानते हैं कि लाल मतलब खराब स्थिति है, पीला मतलब संतोषजनक है परंतु उसमें सुधार की जरूरत है, और हरा मतलब बहुत अच्छा है। तो ये काम को करने के लिए गांव की सहिया, ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य, पीआरआई सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, बीटीटी, सहिया साथी सहयोग करते हैं।
1: सामाजिक अंकेक्षण में मूल्यांकन के लिए कौन कौन से दस्तावेज शामिल किए जाते हैं?
0: सबसे पहले हम लोग सहिया के द्वारा जो ग्राम स्वास्थ्य पंजी है, जिसके तहत वो हरेक परिवारों का नाम, योग्य दंपतियों का नाम, और मृत्यु और जन्म का जो दस्तावेजीकरण करती है वो पंजी हम रखते हैं कि इस गांव में कितने परिवार हैं और कितनों को अब तक लाभ मिला है। दूसरा दस्तावेज हम लोग ग्राम स्वास्थ्य समिति का रजिस्टर रखते हैं कि जिसमें ग्राम स्वास्थ्य समिति तय करती है कि हम और क्या क्या स्वास्थ्य का काम करेंगे जो अनटाइड फंड के इस्तेमाल के लिए होता है। तीसरा जो दस्तावेज

0: हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है कि हर एक गर्भवती और धात्री महिला के पास में मातृ शिशु कार्ड होता है, जच्चा बच्चा कार्ड, या हम उसको एमसीपी कार्ड भी कहते हैं। तो उस कार्ड के तहत ये देखने को मिलता है कि क्या गर्भवती माता को पूरा लाभ उस समय में मिला है और प्रसव के समय लाभ मिला है, और जो बच्चों का टीकाकरण अगर हमें देखना है तो उसमें दिखता है, तो वो दस्तावेज हमारे साथ में होते हैं। इसके साथ साथ जैसे परिवार नियोजन के कोई कार्यक्रम में परिवार के लोग भाग लेते हैं, कार्यक्रम का मतलब लाभ उठाने में, तो उनको भी एक जो रेफरल कार्ड या कार्ड्स दिया जाता है उसे भी हम दस्तावेज में शामिल करते हैं। बहुत बार होता है कि निकल के आती है बातें कि जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो वैसे समय में फिर जरूरी होता है कि अस्पताल से जो अस्पताल से वापस आते समय में जो डिस्चार्ज स्लिप होता है वो दस्तावेज भी लोग रखते हैं। इसके साथ जब पेयजल की असुविधा की बात होती है तो वहां पर बहुत बार होता है कि पंचायतों से तय की हुई योजनाओं का भी आंकड़ा वो लोग देखते हैं कि इन दस्तावेजों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जाँच के लिए। सामुदायिक आधारित निगरानी के लिए जब गांव के लोग नजदीक के स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाकर के भी जांच करते हैं तो वहां पर फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र में जितने तरह के रजिस्टर हैं, जैसे ओपीडी रजिस्टर हुआ, आईपीडी रजिस्टर हुआ, डिलीवरी का रजिस्टर हुआ, दवा वितरण का रजिस्टर हुआ, उसको भी क्रॉस चेक करके जांच की जाती है।
1: सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट किनके पास जाती है और रिपोर्ट में सामने आने वाली बातों पर किस तरह की कार्रवाई होती है?
0: सामाजिक अंकेक्षण सबसे पहले गांव के स्तर पे ग्राम सभा के द्वारा होता है और फिर उसको फिर हम पंचायत के स्तर पर विभिन्न गांवों के जो आंकड़े निकल के आते हैं उसको पंचायत के स्तर पर एक तरह से समीकेत करते हुए, समावेश करते हुए पंचायत में एक बार हम जन संवाद कहते हैं, जो सोशल हियरिंग कहते हैं हम लोग। तो जन संवाद में जो बातें पंचायत के स्तर पर ही उसका निदान हो जाता है तो वो वहीं पे छूट जाती है, और जिनका निदान नहीं होता है जिन समस्याओं का उसको ऊपर हम प्रखंड के स्तर पर लेकर चलते हैं, और प्रखंड के स्तर पर एमओआईसी की अध्यक्षता में ये बैठक होती है, और उसके बाद जो प्रखंड के स्तर की समस्याओं का निदान हो जाता है तो वहीं पे समाधान होते हैं, पर जो निदान नहीं होता है उसे फिर जिला के स्तर पर लिया जाता है ताकि हर एक प्रखंडों से जो समस्याएं निकल के आई हैं समुदाय आधारित निगरानी में उन समस्याओं का जिला के स्तर पर जब जन संवाद होता है जिसमें कि डीसी या जिला परिषद अध्यक्ष सिविल सर्जन के साथ में वहां पे होते हैं, तो वहां पर भी जितनी चीजें जिला के स्तर से निदान हो सकती हैं उसे किया जाता है, और कुछ ऐसी बातें जिनका निदान की जिला के स्तर पर भी नहीं होता है वो राज्य स्तर पर जनसंवाद में आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पिछली बार जब जनसंवाद हुआ था तो जब राज्य स्तर पर जनसंवाद हुआ तो उसमें बहुत सारी जगहों में जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र टूटे फूटे हैं जिसको कि जिला नहीं बना सकता, वो राज्य से ही उस पर निर्णय होता है, ऐसे जो हेल्थ सब सेंटर थे उसका प्रस्ताव आया। और मुझे खुशी इस बात की है कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य की निधि है और प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है उसके तहत और एनएचएम के तहत अभी हमारे राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र जो जीर्ण शीर्ण थे, टूटे फूटे थे या किराए के कमरों में चलते थे, सभी जगहों के लिए नए बिल्डिंग का प्रस्ताव ही नहीं परंतु उसका अनुमोदन प्राप्त करके झारखंड राज्य में राशि आ गई है। तो ये सब हमें कहना चाहिए कि जन जो समुदाय आधारित निगरानी का की एक पहल का भी एक छोटा सा नतीजा है।
1: अच्छा, सामाजिक अंकेक्षण से समुदाय को क्या लाभ है?
0: इसमें दो तरह का लाभ है समुदाय को। पहली चीज कि समुदाय जान पाता है कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि समुदाय अपना जो हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य का अधिकार है उसको समझ पाता है कि सरकार उनके लिए जो योजनाएं करनी है उसको प्राप्त करने का हर व्यक्ति का जो उस गांव में है, हर व्यक्ति का जो झारखंड राज्य में है, उनका समानता का और संपूर्ण अधिकार है।
1: अकय मिंज जी, आज आपसे स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जो उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस बारे में जागरूक हुए होंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अरिजीत की आवाज में, रचना सैयद कादरी की है और संगीत मिथुन का है। मोहब्बत कब और किससे और कहाँ हो जाए, मोहब्बत कब और किससे और कहाँ हो जाए, रोमांस इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। ये घर ही ऐसा है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता।

फिल्म मर्डर 2 का गीत अभी आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह, सैम और मोहम्मद इरफान की आवाज़ों में। रचना सैयद कादरी की थी, संगीत मिथुन का था। और श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म एक दूजे के लिए का एक गीत है। आवाज़ें एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की हैं, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। न कभी बदले ये लम्हा, न बदले ये ख्वाहिश हमारी, न कभी बदले ये लम्हा, न बदले ये ख्वाहिश हमारी, हम दोनों ऐसे ही रहें एक दूजे के, जैसे मैं चाहत और तुम जिंदगी हमारी।

0: हिस्सा अपने दोस्त राजेंद्र को आज के कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं?

0: कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
1: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू, की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरनमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माउस तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोनों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट थे, बोडोस के इंसर्जेंट थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहां पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए और उस वजह से काफ़ी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
0: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
2: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूं कि किस से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन, तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब

0: कि जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक डजन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टेरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा, और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने

0: देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
1: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरीके वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजोल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
0: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
0: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती है?
2: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
0: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में

0: सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गाड़ीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: दिस इज द कंट्री। यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंक

0: आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। इस समय सुने कार्यक्रम सुनहरी यादें।

साथ साथ चलेंगे उन हसीन वादियों में, गलियों में, जहाँ बसी है मोहब्बत की खुशबू, यादों की परछाइयाँ और फिल्मी गीतों की मधुर धुनें। कुछ यादें खुशबू की तरह साथ रहती हैं, कुछ यादें धड़कनों के पास रहती हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए मगर कुछ यादें उम्र भर खास रहती हैं।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी कुछ ऐसे पल देती है जिन्हें हम उम्र भर अपनी पलकों में सजा कर रखते हैं। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही बना रहे, दिल से दिल का रास्ता यूं ही खुला रहे, कौन जाने फिर मिलने का मौसम आए ना आए, आज की रात प्यार का दिया जला रहे। अभी आप फिल्म वो कौन थी का गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। रचना थी राजा मेहदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का था। श्रोताओ, ये गीत जो भी आपने सुना, ये आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना पहली बार सुनने वालों को लगा होगा। प्रेम में सबसे कठिन क्षण वो होता है जब विदा लेने का समय आता है। अभी तो चांद ने रात को सजाया है, अभी तो प्यार ने दिल को गुनगुनाया है, ना जाओ छोड़कर

कितनी मासूमियत, कितनी मिठास और कितना अपनापन है इस गीत में। ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों का, ये गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीत जयदेव का था। तेरी हंसी से मेरी सुबह का उजाला है।

तेरी हंसी से मेरी सुबह का उजाला है, तेरी खुशी से मेरी जिंदगी निराला है। अब मेरे ख्वाबों का हर रंग तुझसे है, तू साथ है तो हर मौसम मतवाला है।

0: शाम ढलते ही यादों का कारवां अक्सर दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। ढलती शाम में तेरी याद चली आती है, खामोशियों में कोई बात चली आती है, दूर होकर भी तुम इतने करीब लगते हो, हर धड़कन में तेरी सौगात चली आती है। मुकेश जी की दर्द भरी आवाज और योगेश जी के शब्द अभी आप सुन रहे थे। फिल्म आनंद का एक गीत था, संगीत सलील चौधरी का था। श्रोताओ, हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल यहां पर और फिर हाजिर होते हैं अगले गीत के साथ।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनहरी यादें में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सचमुच प्रेम वो शक्ति है जो दो अलग रास्तों को एक मंजिल में बदल देती है। तेरी हंसी से मेरी सुबह का उजाला है, तेरी हंसी से मेरी सुबह का उजाला है, तेरी खुशी से मेरी जिंदगी निराला है। अब मेरे ख्वाबों का हर रंग तुझसे है, तू साथ है तो हर मौसम मतवाला है।

जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी यादों में डुबो देती है। जिंदगी के सफ़र में कई मोड़ आते हैं, कुछ अपने मिलते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। जो दिल में बस जाए सच्ची मोहब्बत बनकर, वो बिछड़ कर भी कहीं दूर जाते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीत सचिंद्र बर्मन का था।

दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गीत है जो आपको किसी खास इंसान, किसी खूबसूरत पल या किसी सुनहरी याद की याद दिलाता है, तो उसे संभाल कर रखिए। गीत केवल सुर और शब्द नहीं होते, ये हमारी जिंदगी के पन्नों पर लिखी हुई भावनाएं होती है। यादों की किताबों को सजाए रखना, दिल के कोनों में दीप जलाए रखना, मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बस सपनों को दिल से लगाए रखना। पुराने गीतों की खुशबू यूं ही महकती रहे, हर शाम प्यार की धुनों से बहकती रहे, हम फिर मिलेंगे नई यादों के साथ, आपकी महफिल यूं ही जागती रहे। अंतिम गीत आपने सुना कार्यक्रम का, फिल्म आनंद का वो गीत था। आवाज थी मन्ना डे की, रचना थी योगेश की, संगीत सलील चौधरी का था। इसी साथ अपने दोस्त राजेंद्र को आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सितार पर राग चांदनी कल्याण में आइए सुने आलाप और गत। आलाप और गत तीन तारणीबद्ध हैं। कलाकार हैं निषाद खां। तो आइए सुने सितार पर राग चांदनी कल्याण, कलाकार उस्ताद निषाद खां।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। सितार पर राग चांदनी कल्याण में आलाप वर्गत प्रस्तुत कर रहे थे उस्ताद निषाद खां। तबले पर संगत कर रहे थे शफात अहमद खां। इसे साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।

0: विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated